अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

0: नमस्कार. आचार्य 90 FM वर सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. श्यामची आई या पुस्तकातील कथांचे आपण वाचन करत आहोत. आज मी श्यामचे पोहणे ही कथा सादर करत आहे. ऐकूया हा श्यामचे पोहणे. कोकणामध्ये पावसाळ्यात विहिरी तुडुंब भरलेल्या असतात. हाताने सुद्धा पाणी घेता येत इतक्या भरतात. पावसाळ्यामध्ये पोहण्याची कोकणात मौज असते. नवीन मुलांना यावेळेसच पोहावयास शिकवतात. नवशिक्याच्या कमरेला सुखड किंवा पिढले बांधतात व देतात त्याला विहिरीत ढकलून. विहिरीत पोहणारे असतातच. सहा सहा पुरुष खोल पाणी असले तरी तळाशी जाऊन खर घेऊन येणारे अट्टल पोहणारे असतातच. पाण्यात नाना प्रकारच्या कोलांट्या उड्या मारणारेही असतात. कोणी विहिरीत फुगड्या खेळतात, कोणी परस्परांच्या पायांना पाय लावून उताणे होऊन मानावर करून फोड्या करतात. नाना प्रकार करतात. माझे चुलते पट्टीचे पोहणारे होते. वडिलांनाही पोहता येत असे, परंतु मला मात्र पोहता येत नव्हते. दुसरे पोहत असले म्हणजे मी मजा पहावयास जात असे, परंतु स्वतः मात्र पाण्यात कधी गेलो नाही. मला फार भीती वाटे पाण्याची. आमच्या शेजारची लहान लहान मुलेही धडाधड उड्या टाकीत, परंतु मी मात्र भित्री भागूबाई. ढकला रे श्यामला असे कोणी म्हटले की मी
1: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के बिल्लक. आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है. हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं. तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं. तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तान. पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था. गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी. हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था. किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक. लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित. तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए. और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी. ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए. बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी. गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था. 1942 का साल था. सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था. हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने. सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून. तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरियां ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है. अशफाक हंस पड़ा. अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा. उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था. दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो. यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा। अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली। हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे चैन से जी पाएंगे, हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे, हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे, हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे। अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में जरूरतों का सामान भी ज्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियां जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आजादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आजादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खौल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी, सब भागने लगे। अशफाक पीछे रह गया, एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी। तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं, लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले, चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा, तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग, आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून एक आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

मुस्कुराहट से दिल में खुशी छाई है, जैसे बंजर जमीन पर बहार आई है। हम तो कब से इस पल के इंतजार में थे, आपका आना हमारे लिए सौगात लाई है। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉयिंग मैंगो सीजन? कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच बताना, आपको पके हुए आम अच्छे लगते हैं या कच्चे आम अच्छे लगते हैं? वैसे आम कच्चा हो या पक्का हो, है तो आम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी जिसे कच्चे आम से बनाया जाता है। टेस्ट में खट्टी मीठी लगने वाली ये रेसिपी समर सीजन स्पेशल रेसिपी है। कच्चा आम मींस कैरी के टुकड़े, गुड़, मिर्ची पाउडर और तड़का लगाकर आप इसे 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है कैरीची आमटी मींस कच्चे आम की खट्टी मीठी दाल। आप इसे चावल के साथ मजे से खा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए कच्चे आम की खट्टी मीठी दाल की रेसिपी सुनने। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मीडियम साइज कच्चा आम, ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट एक कटोरी, मेथी दाना पाव चम्मच, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। राई एक छोटा चम्मच, धनिया बीज एक छोटा चम्मच, ब्राउन गुड़ एक बड़ा चम्मच, तड़का लगाने के लिए तेल 4 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, हींग चुटकी भर, मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच, बारीक कटा हुआ धनिया 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वादानुसार। तो अब हम सुनते हैं इसे तैयार करने की रेसिपी। कच्चे आम को काटकर आप इसके मीडियम साइज के टुकड़े कर दीजिए। फिर कद्दूकस मींस ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट में धनिया सीड्स और राई डालकर उसका फाइन पेस्ट बनाइए। फिर तेल गरम कीजिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, कोंकणी या गोवन स्टाइल खाना बनाते समय कोकोनट ऑयल को ही यूज कीजिए क्योंकि कोकोनट ऑयल से उस खाने की खुशबू और टेस्ट दोनों ही एनहांस होते हैं। कढ़ाई में जो गरम तेल है उसमें पहले राई, हींग, मेथी से खुशबूदार तड़का लगाइए, साथ ही ढेर सारा प्यार भी डालिए। वैसे नारियल का तेल जल्दी गरम होता है, इसको आप ध्यान में रखिए वरना वो जल जाएगा। फिर उस तड़के में कच्चे आम के टुकड़े डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें मिर्ची पाउडर, गुड़ और 1.5 कप पानी ऐड कीजिए और उबलने के लिए रख दीजिए। फिर उसमें नारियल और मसालों से मिक्सर में जो पेस्ट बनाया था उस कढ़ाई में ऐड कर दीजिए। अब नमक डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर उसे पकाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। अब इस गर्मा गर्म और खट्टी मीठी दाल को बारीक कटे हुए धनिया से डेकोरेट कीजिए। क्या बात, ताजे और गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसका लुत्फ उठाइए। वैसे ऐसी खट्टी मीठी चीजें समर सीजन में कम से कम एक बार तो जरूर ट्राई करनी ही चाहिए। कहते हैं कि यूं तो आम लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है जनाब, लेकिन ये मत भूलिए कि साल में एक सीजन आम का भी आता है। वही कच्चे आमों के दिन गांव में है, वही नर्म छांव

के दिन गांव में है, मगर ये शहर की अजब उलझने हैं। ना तुम गांव में हो ना हम गांव में हैं। आचार भी है, आमरस भी है, बर्फी भी, श्रीखंड भी है, जान भी है, दिल भी है। बड़ी अच्छी लगती है हमें आम की हर महफिल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। हमारे प्यारे ऑडियंस से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को आम से इतना प्यार है कि गर्मी का सीजन जल्दी आ जाए इसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं? वैसे गर्मियां आने पर ये नजारा होता है कि हर गली और चौराहे पर सिर्फ आम ही दिखाई देते हैं। क्या शहर और क्या गांव, हर जगह सिर्फ आम ही बिकेंगे, क्योंकि आम आम लोगों से दूर नहीं होता है, इसे खाने में मजा भरपूर होता है। वैसे आज हम पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक ऐसी सिंगर की बात करेंगे जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम मेंशन कराया है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, ऐसे कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स की ये हकदार है। यहाँ पर बात हो रही है आशा ताई के नाम से मशहूर रह चुकी हम सब की फेवरेट आशा भोसले की। उन्होंने सोलो, ड्यूएट और कोरस गाने गाए हैं। इस स्पेशलिटी की वजह से ही उन्हें मोर देन 100 अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी आवाज आज भी लोगों के कानों में नहीं बल्कि दिलों में गूंजती है। आशा ताई ने महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड 18 बार जीता है, ये अपने में एक रिकॉर्ड है। संगीत की दुनिया में अपने अनोखे योगदान के लिए आशा ताई जानी जाती है। ये सब उनके 80 साल के ज्यादा लंबे म्यूजिकल करियर में की गई मेहनत का नतीजा है। आशा ताई ने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। अपनी सुरीली आवाज और अनगिनत सुपरहिट सॉन्ग्स के जरिए उन्होंने म्यूजिकल लवर्स के दिलों पर राज किया है। दुनिया की सबसे महान फीमेल सिंगर्स में आशा ताई का नाम शामिल है। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 11,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज ने पीढ़ियों को हर मूड, खुशी, दिल टूटने, उत्सव और भक्ति में साथ दिया है। आशा ताई का बचपन मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के सांगली में गुजरा है। 8 सितंबर 1933 को जन्मी हमारी आशा ताई मंगेशकर परिवार से ताल्लुक रखती है। मशहूर सिंगर इंडियन नाइटिंगेल लता दीदी मंगेशकर की आशा ताई छोटी बहन है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने उन्हें बचपन से संगीत सिखाना शुरू किया था। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आशा ताई ने कम उम्र में ही गाना शुरू किया। एक मराठी फिल्म में गाना गाकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अपनी दमदार आवाज के दम पर आशा ताई ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। आशा भोसले को उनके साहसी गायन और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के लिए याद किया जाता है। हमें नाज है भारत की इस बेटी पर जिन्होंने इतने वर्षों तक अपना नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। अब वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइए, हम आपसे और भी बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो।

हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती हैं। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। फिल्मी दुनिया की अनोखी अदाकारा हमारी आशा ताई, जैसे भारत की गान कोकिला लता दीदी की परछाई, सारी दुनिया में नाम कमाया, माध्यम था संगीत, लोगों के जहन में हमेशा रहेंगे इनके मधुर गीत। गर्व से दोहराएंगे हम आपकी म्यूजिकल दास्तान, विश्व में बनाया रिकॉर्ड आपने, इसलिए खुश है हिंदुस्तान। आपके गुजरने से रो रहा आसमान, हर मूड को देखकर सुर गाई सुरीली दास्तान। आशा और लता ने बनाई सुरों से अलग सी पहचान, अब आपके जाने का हमें है अफसोस, संगीत जगत अब लगता है जैसे सुना और ओस। हमेशा याद रखेंगे आप ही का तराना, दिल से कहती हूँ शुक्रिया फॉर अनोखा म्यूजिकल जमाना। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे शो का नाम है स्वाद का जायका। आज की हमारी अगली रेसिपी है आम की फिरनी, मींस मैंगो फिरनी। मौसम भी है दस्तूर भी, आम की बात को और खास करते हैं। वैसे फिरनी पर्शियन ओरिजिन की एक शाही मिठाई है। इसे पीसे हुए चावल, दूध, चीनी, केसर और इलायची से बनाया जाता है। ट्रेडिशनली इसे मिट्टी के बर्तनों में मींस शिकोरों में ठंडा परोसा जाता है, कुल्हड़ में परोसा जाता है। वैसे ये मैंगो फिरनी समृद्धि और शाही स्वाद का प्रतीक है। ये मिठाई मोस्टली रमजान में बनाई जाती है, लेकिन आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल रिवाज समझकर बना रहे हैं। खीर बनाते वक्त हम अक्खा मीन्स साबुत चावल यूज करते हैं, लेकिन फिरनी बनाते समय पीसे हुए चावल का उपयोग होता है और इस वजह से फिरनी का टेक्सचर मलाईदार और गाढ़ा होता है, थोड़ा कस्टर्ड टाइप होता है। इसे बनाने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है और इसे खाने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। तो चलिए हम अब इसकी रेसिपी सुनते हैं। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 50 ग्राम, इन्हें अच्छे से धोकर आधा घंटा पानी में भिगाइए, फुल फैट मिल्क मतलब दूध 1 लीटर, मैंगो पल्प आधा कप, अगर अल्फोंसो मैंगो को यूज कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, शक्कर 100 ग्राम, इलायची पाउडर 2 चुटकी भर, काजू पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और ये ऑप्शनल है, कटे हुए मैंगो पीसेस डेकोरेशन के लिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसे बनाने के स्टेप्स सुनते हैं। सबसे पहले भिगोए हुए चावलों से पानी निकालिए। अब इन चावलों को दरदरा मींस मोटा मोटा पीस लीजिए। यहाँ आप मिक्सर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे पल्स मोड पे चलाइए। फिर भारी बेस वाली एक कढ़ाई में दूध गर्म करें और उसमें उबाल आने दें। अब पीसे हुए चावलों को उस उबलते हुए दूध में डालें। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाइए। थोड़ी देर बाद चावल पक जाएंगे और दूध भी गाढ़ा होने लगेगा। फिर उसमें शक्कर और इलायची पाउडर डालकर 2 मिनट फिर से पकाइए। अब गैस बंद कर दीजिए। वो तैयार मिश्रण थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। अब उसमें मैंगो पल्प मिक्स कीजिए। अब इस फिरनी को मिट्टी के कुल्हड़ में निकालिए। इस पर मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट से सजावट कीजिए। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सर्व करते समय इसे ठंडा ही परोसिए। अब आप सबकी खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है फिरनी। फिरनी को कुल्हड़ में परोसा और नाम दिया शाही, इसका अनोखा स्वाद ही देखा आम होने की गवाही। कुल्हड़ की मिट्टी से बढ़ता है इसका स्वाद, खाने वाला हर कोई इसे हमेशा रखेगा याद। फिरनी को खिलाकर बढ़ाओ दोस्ती यारी, मेरे देश की मिट्टी से फिरनी की टेस्ट लगे और भी प्यारी। खाना शेयर करने से पराए भी होंगे अपने, जब एक होगा भारत तब सच होंगे सपने। स्वाद का जायका शो पर बनाकर लजीज खाना, मन होगा खुश जब सुनोगे कोई गाना। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM।
वैसे मैंगो के सीजन में हम आम बातें करते ही हैं, लेकिन आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आसमान में दिखने वाले बादलों के भी टाइप्स होते हैं? वैसे क्लाउड मींस बादल, राइट? जब गर्म पानी भाप या स्टीम बनकर ऊपर आसमान में पहुंचता है तब बादल बनते हैं, और बादलों को मेघ, घटा या जलद इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम बादलों के प्रकार के बारे में सुनते हैं। ऊंचाई मींस उनकी हाइट के आधार पर उनके नाम क्या होते हैं, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। जो बादल धरती से 6500 फीट तक की ऊंचाई पर होते हैं उन्हें लो क्लाउड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये बादल भूरे रंग के होते हैं और पूरे आसमान को ढक देते हैं। फिर आते हैं मीडियम क्लाउड्स, जो 6,500 टू 20,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टो स्ट्रेटस, ये ब्लू या ब्लू ग्रे कलर के होते हैं। ये सूरज की रोशनी को ढक देते हैं। इन्हें बादलों की चादर भी कहा जाता है। वैसे थर्ड टाइप के हाई क्लाउड्स जो 20,000 फीट से ऊपर होते हैं, इन्हें सीरस क्लाउड्स कहते हैं। दिखने में ये बर्फ के क्रिस्टल के होते हैं। ये बादल ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये बारिश वाले बादल नहीं है। है ना इंटरेस्टिंग बात? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। अगर जीवन का सार समझना है तो एक बार फुर्सत से बादलों को देख लेना। सुख और दुख का आना और जाना बादलों की हलचल से समझ लेना। जिंदगी के हर मोड़ पर देखे हमने मुकाम, कभी मिला दुख तो कभी खुशी का पैगाम। एक ही जगह रुकना नहीं किसी के भी बस में, बदलाव को रोकना नहीं हमारी नस में। जनाब जिंदगी में आएंगी मुश्किलें क्योंकि यहाँ जीना नहीं आसान। एकजुट होकर भारतवासी बनेंगे नेक इंसान। औरों पर रोक जमाने का नहीं हमें शौक, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक है बेखौफ। दुनिया में सबसे अलग और अव्वल मेरा भारत देश, चमकेंगे हीरे की तरह क्योंकि हर भारतवासी है विशेष। मैं हूँ RJ भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो।

0: हुआ?
1: आशीष चला गया और मैं उसे ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई।
0: क्यों?
1: क्योंकि जाने से पहले मैंने उसे झगड़ा कर दिया।
0: तो रोने से क्या होगा, जहाँ वो गया है वहाँ जाओ और मना लो।
1: सच?

से गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और बारिश का मौसम आने में अभी थोड़ा और टाइम है, इसीलिए हमें कुछ वक्त इंतजार करना होगा। वैसे हर मुश्किल हमारे अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है, उसे डरने का चांस मत दीजिए। यहाँ पर वैसे चुप रहने का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जनाब, चुप रहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि आप सच को साबित करने की कोशिश करें, उससे कुछ नहीं बदलेगा। उस वक्त चुप रहना ही सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। कई बार हम ये देखने में बिजी हो जाते हैं कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, और इस टेंशन में हम ये देखने का टाइम नहीं निकाल पाते कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। इसलिए अब से खुद को समझिए, खुद की पहचान बनाने की सोचिए। दूसरों के जैसा बनने में अपना टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसे हैं क्या? नहीं ना। हर किसी की अपनी पहचान, अपना वजूद होता है। वेस्टर्न कल्चर को हर बात में कॉपी करना ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसे अपनाकर हम अपनी खास पहचान बना ही सकते हैं। सिर्फ पहचान बना सकते हैं ऐसे नहीं, अपने भारतीय होने पर दुनिया में मशहूर भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां हम नहीं होते वहां हमारे अच्छे और बुरे गुण हमारी मौजूदगी बताते हैं। मैं हूं RJ भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो मिरर की तरह काम करता है, मींस आईने की तरह। हम इसमें जो एनर्जी भेजते हैं वही एनर्जी इसमें से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास लौट कर आती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ऐसा कमाल करें कि पूरी दुनिया में हमारे नाम का ही डंका बजे। वैसे हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें परेशान करने ही आती हैं, ताकि परेशान होकर हम उस सिचुएशन से बाहर निकले। झूठ कहकर किसी की लाइफ को बर्बाद करने की वजह अगर कोई बनता है तो उस झूठ को एज अ लोन कंसिडर किया जाता है, और सही वक्त आने पर उस लोन को विद इंटरेस्ट चुकाना, इसे ही कहते हैं कर्म। इसलिए अपनी जिंदगी अगर खुशहाल बनानी है तो पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाइए और ना ही दूसरों की बातों पर। कल की चिंता छोड़िए और आज को, इस पल को खूबसूरत बनाइए। मैं हूँ RJ भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे ज्यादा सोचना ये काल्पनिक समस्याओं को निर्माण करता है, मींस इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने फिर रफ्ता जिंदगी को समझना शुरू किया, तब पता चला जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो नहीं मिला तो सब्र। क्योंकि सही समय आने पर ऊपर वाला इतना देगा कि आप खुद ही कहेंगे कि सब्र का फल मीठा होता है। और जब हम सब्र कर रहे होते हैं, इंतजार करके टेंशन आ जाता है, तब एक सवाल हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, और वो सवाल है कि इस मुसीबत में मेरा रोल क्या है। और यही सवाल आपको सबसे ज्यादा राहत देगा।

खुद ही अपना मोटिवेशन बनाकर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बनाना है। और आप यकीन मानिए, जिसने अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाया है वो इस दुनिया के पावरफुल लोगों में से एक होता है। वैसे समय हर जख्म को भर देता है, क्योंकि समय हर जख्म की दवा है ऐसे कहा जाता है। लेकिन कुछ जख्म हमारे मन में हमेशा रहते हैं, वो हमें दर्द देते हैं, सिखाते हैं और मन से मजबूत बनाते हैं। वैसे खुद के फायदे के लिए कभी दूसरों की भावनाओं से खेला नहीं करते हैं, क्योंकि समय और कर्म हमेशा घूमते रहते हैं। कोई चाहे कितने भी घर बदले, कर्म अपना एड्रेस बराबर ढूंढता है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैं खुद कंपटीशन में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि दूसरे मेरे जैसे बन नहीं सकते और मुझे भी औरों की तरह नहीं बनना है। भाई कर्म करते रहो, लोग हाथ से छीन सकते हैं, नसीब से नहीं। वैसे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है और कभी कभी आंखों में आंसू भी लाती है? सोचिए सोचिए जनाब, वो चीज जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू भी लाती है, वो चीज है याद। क्योंकि रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, रिश्ता बातों में खत्म हो तो आंखों में रहता है, और आंखों में खत्म होने पर वो रिश्ता हमारे मन में रहता है।

0: चर्चे भारतीय सीमा और हम आपसे बात कर रहे हैं इस शो पर जिसका नाम है स्वाद का जायका। कहते हैं कि किसी पर बारीक नजर रखने से वो इंसान अच्छे से काम करेगा, ये सोचना कितना गलत है कि नहीं। वो इंसान तब अच्छा काम करेगा जब आप उस पर भरोसा करेंगे। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे आसपास के लोगों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए हर बात का जवाब देने की बजाय कभी कभी मौन भी हो जाइए, मतलब शांत रहिए, चुप रहिए। हमारा मन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हमारी परमिशन के बगैर कोई नेगेटिव बात एंटर नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी आवाज कौन सी है? तो सुनिए, दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है खामोशी। है ना मजे की बात कि दवाइयां लेने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन हमेशा खुश रहने जैसी कोई दवा ही नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आचार्य 90 FM ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और इस शो का नाम है स्वाद का जायका। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का। ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, पक्का वादा। हाँ, मैं जाकर वापस आ रही हूँ। अब बातों बातों में और भी बातें होंगी, ये मुलाकात अब दोबारा होगी। जितना समय मेरे पास था उतना ही आपके पास भी था, लेकिन जल्दी ही अब नई मुलाकात जरूर होगी। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

अजय 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग, कसे हाथ सगे? ऑल गुड ना भाई? होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब हैं आचार्य 90 FM के खास दोस्त और दोस्ती निभाना यही है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। तो पेश है आप सबकी खिदमत में गर्मी सीजन स्पेशल और मैंगो सीजन स्पेशल मैंगो हलवा मीन्स आंब्याचा शिरा। ये समर स्पेशल एक स्वादिष्ट और सॉफ्ट टेक्सचर वाली डिश है। सूजी मीन्स रवा से बना हुआ हलवा तो टेस्टी होता ही है, लेकिन मैंगो पल्प से बना शीरा भी कुछ कम नहीं है। इसका सुनहरा रंग और खुशबू दोनों ही आपकी रसना मीन्स टेस्ट बर्ड्स को तृप्त करेंगे और इसे देखते ही आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर आएगी और इसका पहला निवाला खाकर आप वाह वाह ही करेंगे। वैसे आम से बनने वाली ये रेसिपी है एकदम खास। गर्मी सीजन का समानार्थी शब्द ही है आम का सीजन। मैंगो लस्सी, मैंगो कुल्फी, मैंगो मिल्कशेक ये सब तो है ही, लेकिन मैंगो हलवा भी उतना ही खास है। वैसे मुंह में डालते ही झट से मेल्ट होने वाला ये मैंगो हलवा मेरा भी फेवरेट है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: देसी घी एक कटोरी, रवा मीन्स सूजी एक कटोरी। आप बारीक या जाड़ा कोई सा भी रवा ले सकते हैं, वैसे अगर बारीक रवा ले तो बेटर है। दूध एक कटोरी, शक्कर एक कटोरी, मैंगो पल्प एक कटोरी, इलायची पाउडर एक चुटकी भर, सोक्ड मिक्स ड्राई फ्रूट्स या फिर मिल्क मसाला 2 चम्मच, केसर 5-6 डंठल और ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। यहाँ पर आप हापुस, पायरी, दशहरी, लंगड़ा या कोई और आम ले लीजिए चलेगा, बस वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। अब आप सुनिए इसकी रेसिपी। एक कढ़ाई में देसी घी को धीमी आंच पे गरम कीजिए, फिर उसमें सूजी यानी रवा डालकर उसका रंग गोल्डन होने तक उसे हिलाइए। अब इसे बनाते वक्त ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। जब रवा पक जाए तब उसमें दूध, केसर और शक्कर डालिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर उसमें मैंगो पल्प ऐड कीजिए। इस मिश्रण को धीमी आंच पे मिक्स करते हुए पकाइए, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स कीजिए। इस पर ढक्कन रखकर इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाइए। इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। ये पूरी तरह से पकने के बाद मिक्स ड्राई फ्रूट्स या मिल्क मसाला डालकर इसे सजाइए। इस प्रकार मुंह में डालते ही झट से घुलने वाला मैंगो शीरा हो गया है एकदम तैयार। वाह वाह, मुझे तो ये सोचकर ही भूख लग रही है। इसे आप पहले भोग लगाने ले जाइए, क्योंकि भगवान को भोग लगाकर आप इसकी सात्विकता को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। एक चपटे टाइप बर्तन में इस मैंगो शीरा को अच्छे से फैलाइए। यहाँ पर आप सिरेमिक क्रॉकरी यूज करेंगे तो बेटर है। अब एक चॉकलेट बार को छुरी से काटकर उसे एक पतली स्टिक का शेप दीजिए। अब इस चॉकलेट स्टिक को उस मैंगो हलवा वाले बर्तन में रखिए। ये हुआ एक पेड़ का ट्रंक मीन्स झाड़ा से खोड़। अब भिगोए हुए पिस्ता को आप पतला पतला काटिए। इन पतले टुकड़ों से पेड़ के पत्ते वाला डेकोरेशन कीजिए। वैसे चॉकलेट का ट्रंक और पिस्ते की बनी 5 ब्रांचेस मीन्स सीधी लाइन्स ये डेकोरेशन इसे कोकोनट ट्री वाला लुक देगा। फिर केसर के 2 डंठल जोड़कर उसे वी शेप दीजिए।

वैसे गर्मी के सीजन में सूरज की किरणें ज्यादा तेज हो जाती है। आज मैं आपको हमारे सूर्य भगवान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देती हूँ। भगवान सूर्य के रथ को सिर्फ एक ही व्हील मीन्स पहिया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, उनका रथ एक ही पहिए से दौड़ता है, जो एक वर्ष को दर्शाता है। उसमें 12 आरियां हैं, मतलब 12 महीने। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जोड़े हुए हैं, जो हफ्ते के 7 दिन दर्शाते हैं, और उनके नाम है गायत्री, वृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम विपग्योर कहते हैं, मींस बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।

0: इस रथ के सारथी है अरुणा और इनकी दोनों टांगे नहीं है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भगवान सूर्य के रथ को चलाने वाले उनके सारथी अरुणा की दोनों टांगे नहीं है। और ये अरुणा पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई हैं, है ना, इंटरेस्टिंग जानकारी। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। इंटरेस्टिंग बातों के साथ साथ हम सुनते हैं हमारी अगली रेसिपी, जो है मैंगो साल्सा, मीन्स सैलेड टाइप रेसिपी है। ये जूसी भी है और थोड़ी तीखी भी है। यहाँ पर हम इसे इंडियन स्टाइल से बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पके हुए आम के टुकड़े एक कटोरी, बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च 2 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, बारीक कटा हुआ कांदा मीन्स प्याज 1/2 कटोरी, बारीक कटी हुई कोथमीर 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, काली मिर्ची मीन्स ब्लैक पेपर पाउडर 2 चुटकी, नमक स्वादानुसार। अब इसकी रेसिपी सुनिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। हो गया मैंगो साल्सा रेडी टू ईट, है ना, एकदम झटपट बनने वाली हेल्दी रेसिपी। अब इसे चाहे तो ऐसे ही खाओ या थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाओ। वैसे चिप्स के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं या फिर नाचोस के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। वैसे ये इंडियन स्टाइल से बना हुआ सैलेड ही है। तो आप इस मैंगो साल्सा को रेगुलर दाल चावल के साथ खाकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी फैंसी नाम हो, खाना खाने वाला पक्का हिंदुस्तानी है कि नहीं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे।
1: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उसे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और अपनापन जताने के लिए हमारा शो स्वाद का जायका एक परफेक्ट बहाना है। इसीलिए तो तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे भी पास हो। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। आई होप आपने कुकिंग करना शुरू किया ही होगा। जनाब इसमें सोचने की क्या बात है। खाना और खिलाना हमारे मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तभी तो दोस्ती सिर्फ दिखाने से

मजबूत नहीं होती, बल्कि दोस्ती एक दूसरे के दिल से जुड़ी होनी जरूरी होती है। और खाना खिलाकर दोस्ती करना हम बखूबी जानते हैं। वैसे आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमें जरूर लिखिए। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक सीड मदर की, जो एक आदिवासी महिला किसान और संरक्षणवादी है। उन्हें देसी बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बीज माता मीन्स सीड मदर के नाम से जाना जाता है। जो बीज आमतौर पर व्यावसायिक बीज कंपनियों के पास उपलब्ध नहीं होते वो इस बीज माता के पास संभाल कर रखे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ राहीबाई पोपरे, इस सीड मदर की। अगर हम केमिकल वाली खेती के बदले ऑर्गेनिक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा दे तो हमारा ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी भी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। वैसे अच्छाई तो हम सब में होती ही है, लेकिन किसी को हेल्प करने में न जाने क्यों हम ज्यादा सोच इस्तेमाल करते हैं। भाई, अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे विचारों से बना खाना खाओगे, तो तन और मन दोनों स्वस्थ ही रहेंगे। इस बात से मुझे पुराने दिन याद आ गए। वो दिन भी क्या दिन थे, जब स्कूल के बच्चे अपने दोस्तों के साथ एक साथ बैठकर अपना टिफिन शेयर करते थे। इससे अलग टेस्ट वाला खाना भी शेयर होता था और दोस्ती भी पक्की बन जाती थी। और छोटे बच्चों में ईगो तो होता नहीं है, अगर कोई टिफिन लाना भूल गया है तो उसका खास ख्याल रखा जाता था। और खास बात ये है कि उस खाना खिलाने की बात को बड़े होने के बाद भी याद किया जाता था, क्योंकि उस छोटी सी मदद के मायने बहुत ज्यादा होते थे। वैसे अपने फ्रेंड के टिफिन की वो कौन सी रेसिपी है या वो कौन सा खाना है जो आपको बेहद पसंद था। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। वैसे बचपन में मेरी एक दोस्त की मम्मी आम का टेस्टी अचार बनाती थी और बहुत से बच्चे उसके टिफिन से वो अचार उठा लेते थे। फिर मेरी डिसअपॉइंटमेंट देखकर मेरी दोस्त रोटियों के नीचे छुपाया हुआ आम का अचार चुपके से मुझे दिखाती थी, क्योंकि उस भीड़ में मेरे लिए कुछ बचाना उसे पॉसिबल नहीं होता था। इससे कहते हैं दोस्ती निभाना। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस भी हमारे खास दोस्त ही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि खाने और गाने के जरिए हमारी दोस्ती दिन ब दिन और गहरी हो जाएगी। हम पर विश्वास करने की कोशिश करना, हम बेवजह किसी का भी दिल दुखाते नहीं है। कुछ ऐसा था आप में जो हमें बहुत अच्छा लगा, वरना हम भी यूं ही किसी को दोस्त बनाया नहीं करते हैं। वैसे हम सारे भारतवासी एक साथ मिलकर दुनिया में अपनी यूनिटी दिखाने का समय अब आ गया है। ये सच है कि दीवार पर टंगा कैलेंडर हर रोज तारीख को बदलता है जनाब, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है जो पूरा कैलेंडर ही बदल देती है। वैसे समझदार को इशारा काफी है, जैसे भूख लगने पर हमारा पेट हमें बताता है कि भाई अब खाना खा लेना चाहिए। वैसे हमारा दिमाग हमें पता नहीं चलने देता कि हमें अच्छे विचारों की जरूरत है, इसीलिए हमें मन को अच्छी बातें सोचने की आदत डालनी ही पड़ेगी। इसीलिए भारतीय सभ्यता को अपनाइए और आचार्य 90 FM के साथ गुनगुनाइए। एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुर्धारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरे सामने जो लड़ने के लिए खड़े हैं वो मेरे अपने हैं, तो मैं उनसे कैसे लड़ूं? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अपने कभी हमारे सामने खड़े नहीं होते, अपने हमेशा साथ खड़े होते हैं, और हम भी आचार्य 90 FM के ऑडियंस के साथ खड़े हैं। जब चलते चलते हमारे पैर लड़खड़ाते हैं और हमें चोट लगती है, वहीं से हमारी शुरुआत होती है संभल कर चलने की।
अब चोट चाहे पैरों में लगे या मन पर, यही चोट और लड़खड़ाना हमें सिखाता है मन पर काबू पाना। मन पर लगे घाव हमें इंसान की परख करना सिखाते हैं। भाई इसी का नाम जिंदगी है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 98।

मन की भावनाओं को मत बिखरना, भारतवासी है हम, अब इंद्रधनुष बनकर निखरना, दिखाकर अपना दम। इसीलिए लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। हम शांत बैठे हैं मतलब सब कुछ सह लेंगे, ये समझना दुश्मन की बड़ी गलती है जनाब। वैसे हम दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और हमारे भारत देश में त्योहारों की जितनी वैरायटीज है उतनी शायद ही किसी और देश में होगी। हमें तो बस अलग अलग बहाने ढूंढने हैं और स्वाद का जायका निभाना है। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। अभी के हालात कुछ इस तरह के हैं कि चल रहा है हमारी परीक्षा का समय, आ गया है वक्त अब लेने का निर्णय। इस बार होगी लड़ाई आर या पार, देश के दुश्मन पर होंगे वार कई बार। हमने अब तक सहे न जाने कितने सारे कष्ट, पूरा करेंगे हिसाब करके तुझे नष्ट। अफरा तफरी मचाकर ना कर नादानी, चैन से ना बैठ करके बेईमानी। इस मिट्टी का टीका लगाकर सजाया अपना माथा, भारत में दोहराएंगे विश्व विजय की गाथा। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे अलग अलग तरह के लोगों से बनी है ये दुनिया, और ऐसे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तब हो सकती है लड़ाई, लेकिन इससे हमें क्या। हमें तो बस तैयार रहना है एक शानदार जीत के लिए, क्योंकि हम हैं और बाकी पानी कम है। क्योंकि कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है और अच्छे कर्म करना यही हमारा धर्म है। कहते हैं कि खाने की वजह से ही हम बीमार होते हैं और खाने की वजह से ही हम ठीक भी होते हैं। तो भाई, हेल्दी फूड को अपनाइए और जंक से थोड़ा दूर ही रहिए। हमारे इस शो पर फिलहाल आम की बातें हो रही हैं। आम सा लगने वाला ये किस्सा तो सरे आम हो गया। घर से निकले थे लेकर कैरी, उन तक पहुंचे तो आम हो गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम जल्द ही लौटेंगे।

0: अगले कुछ दिनों तक हम आम से जुड़ी कुछ खास रेसिपीज की बातें करेंगे, क्योंकि आम काट के खा रही हूँ मैं, आम काट के खा रही हूँ मैं, कत्ले आम मचा रही हूँ मैं। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे समय और साबुन के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हाथों से फिसलती है? सोचिए जनाब, थोड़ा और सोचिए। जवाब मिला आपको? समय और साबुन के अलावा हमारे हाथों से फिसलने वाली उस खास चीज का नाम है आम की गुठली। वैसे जब आम का रस बनाया जाता है तो उसकी गुठलियां एंजॉय करने का एक रिवाज होता है, और इन गुठलियों को खाना मतलब अपने कपड़ों पर आम सबूत छोड़ना। भाई आजकल पेड़ पर लगे आम खुद ही मजबूरी में नीचे गिरने लगे हैं, क्योंकि आम को भी पता है कि पत्थर मारने वाला बचपन अब मोबाइल में बिजी है। ये बात है छोटी लेकिन कितनी गहरी है ना। पहले के जमाने में बच्चे गांव में जाने के लिए छुट्टियों का इंतजार करते थे, वहां पर आम के पेड़ की खूबसूरती को देखते थे, उसकी ठंडी छांव में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, फिर कच्चे आम तोड़कर उसे नमक और मिर्ची लगाकर मस्त में खाते थे। अब ये सब नहीं होता, बस मोबाइल की वर्चुअल दुनिया में हम खो गए हैं। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सुनिए, बेचारे विदेशियों के पास आम की बस एक ही वैरायटी है और उस वैरायटी का नाम मैंगो है, और हमारे भारत में सिर्फ 1000 से 1500 वैरायटीज हैं सिर्फ। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये वैरायटीज पाई जाती हैं। रफली 250 टू 1000 वैरायटीज को एज अ कमर्शियल पर्पस हम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में 50% मैंगोज हमारे भारत देश में ही मिलते हैं, और इन वैरायटीज में अल्फोंसो मैंगोज मींस हापुस आम को बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। हापुस आम सब आमों का राजा है। देखा हमारा भारत देश कितना स्पेशल है, जो गर्मियों की मार को भी आम उगाकर कितना खास बनाता है। अभी के हालात तो युद्ध के हैं, और हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी मीठे आम में बदल जाती है। वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।
1: हाय, कितना खूबसूरत है

कहते हैं कि जब हमारा टाइम नहीं हो तब हमें चुप रहना चाहिए, उस वक्त धीरज रखिए, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा दौड़ा ही जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी मिल जाती हैं जनाब, जैसे सुख और बहस करने के, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बदले हम हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। हम जब कुछ अच्छी बातें करते हो और उस अच्छे कर्म को अगर किसी ने भी नोटिस नहीं किया तो हमें बुरा लगता है कि नहीं? लेकिन हमें अपने दिल को खुद ही मनाना है, क्योंकि हर सुबह के लिए सूर्योदय ये चमत्कार होता है और इस बात का गवाह होना एकदम अनोखी बात है। भाई, ज्यादातर लोग इतनी जल्दी उठते ही नहीं, तभी तो उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। और आप उन सिलेक्टेड लोगों में हो जिन्होंने अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय देखकर की। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। वैसे जापान को द कंट्री ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है और हमारे देश भारत को ज्ञान की खोज में लीन ये मीनिंग रखने वाला नाम मिला है और प्राचीन ग्रंथों में भारत देश को भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। हमें गर्व है भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा पर, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम मीन्स सारी दुनिया एक परिवार है और अतिथि देवो भव, इन बातों में हम विश्वास रखते हैं। जॉइंट फैमिली और बड़ों का सम्मान ये भारतीय समाज का बैक

बैकबोन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग यहाँ मिलकर रहते हैं। इतना ही नहीं, त्योहारों को भी साथ मिलकर ही सेलिब्रेट भी करते हैं। हमारी परंपरा को सारी दुनिया में रिस्पेक्टेबल माना गया है। हमारा आयुर्वेद हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंस्पायर करता है। तभी तो त्योहारों में हमारी सेहत के लिए बेहतर हो ऐसा ही खाना बनाया जाता है। और खाना सिर्फ बनाया ही नहीं जाता, उसे अपनों और गैरों के साथ शेयर भी किया जाता है। इतना ही नहीं, हम भगवान को भी सीजन स्पेशल खाना खिलाते हैं, है कि नहीं? वैसे मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊं, तो सुनिए। अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, मींस माउथ अल्सर है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके श्रीखंड चाटिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अगर श्रीखंड को अपने मुंह में घोल कर खाएं, तो उसे खाते खाते ही आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अगर यकीन ना आए तो एक बार ट्राई कर लीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना था कि सुमन और विकास, यानी विकास किस तरह अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करता है और कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी बीवी को होटल शालीमार लेके जाने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। अब दोनों जो होटल शालीमार पर आके पहुंच गए तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनते हैं कहानी का अगला भाग। विकास और सुमन अब होटल के बाहर खड़े हैं। एक आलिशान होटल जो मुंबई में किसी JW मैरिट होटल से कम नहीं, ठीक उसी तरह। दोनों बाहर खड़े, दोनों के मन में न जाने कितने अनगिनत सवाल है। ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें कोई ना दे सके, वो खुद भी नहीं जानते कि इन सवालों का जवाब ढूंढे कहां से। एक जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन पे आ गया था, जो सोशल टाबू हो जाता है कि गरीब लोग बड़े होटल में नहीं जा सकते। हाँ, जाने शायद बचपन में उन्होंने ये सुना हो, तो इसीलिए वो जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे उस होटल की ओर, उनके दिल में ना जाने कितने कश्मकश, कितने सवाल, कितनी बेचैनियां उमड़ रही थी अंदर। एक सैलाब उमड़ रहा था कि वो सच में जाए या ना जाए। सुमन ने विकास का हाथ थामा और कहा कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? विकास ने जवाब दिया। वो क्या है ना कि आप तो जानते ही हैं कि हम कितने गरीब हैं और यहाँ पे आने वाले सारे अमीर, तो क्या हमारा जाना सही होगा? लोग हमें किस नजर से देखेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए घर? बड़ी धीमी आवाज से सुमन ने कहा यह। भला क्यों हमें लोग बुरी नजर से देखेंगे या ऊंच नीच वाली नजर से देखेंगे? हमारे पास पैसे है भाई, और हम थोड़ी किसी का फ्री में खाना खाने आए हैं ना, हम तो पैसे लेके आए हैं, और पैसे है तो खाना खाया जा सकता है। यहां पे क्या, लंदन में भी खाना खाया जा सकता है अगर पैसे है तुम्हारे पास। बड़ी मजाकिया तौर पर विकास ने सुमन से कहा, और यही कुछ चीजें थी, यही विकास का कहा हुआ था जो सुमन के अंदर उसने हौसला पैदा किया, और दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, वो जाएंगे अंदर। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कदम दोनों के बढ़ते रहे होटल की ओर, और जब होटल के दरबान के पास पहुंचे तो विकास ने अपनी जेब में से, ऊपर वाली जेब में से, शर्ट की जेब में से 50 रुपए निकालकर, जो शायद उसने पूरे दिन भर में कमाया था बूट पॉलिश करके, वो 50 रुपए जो उसने उसके ऊपर की जेब में रखे थे वो निकालकर रख दिया दरबान के हाथ में, ताकि दरबान उन दोनों को अंदर जाने से रोके नहीं। अब ये बात विकास को संदेश ने बताई थी कि अगर तुम कभी भी किसी बड़े होटल में जाते हो और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहनावे से या तुम्हारे रंग रूप से कोई तुम्हें बाहर निकाले, तो सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना कि किसी भी होटल के दरबान को कुछ पैसे उसके हाथ में रख दो, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं, वो आपको बड़ा आदमी समझेगा। और यही विकास ने किया, और दरबान के हाथ में 50 रुपए रख दिए। सुमन और विकास दोनों अब अंदर चले गए। अब दोनों अंदर चले गए, देख रहे हैं कि जाके कहां बैठे कहां बैठे कहां बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेबल खाली है, लेकिन उनके ऊपर एक लंबा सा
कुछ रखा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उसी एक ऐसे बड़े से टेबल पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है रिजर्व जैसा, वहां पर सुमन जाके बैठने की कोशिश करती है, उतने में पीछे से एक वेटर आता है, मैडम मैडम रुक जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। तो सुमन एक मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं, किसी ने बुक किया, ये क्या होता है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, उसने हमें पहले ही सूचना कर दी है कि वो यहाँ पे आएंगे और ये टेबल उनके लिए ही बुक है, आप एक काम कीजिए वो वहां पे देखिए, टेबल खाली है, वो किसी के लिए बुक नहीं है, आप और सर वहां पर जाके बैठिए। अब जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति ने विकास को और सर बोला था, तो विकास काफी खुश हुआ कि हाँ चलिए किसी ने तो हमें सर बोला। अब विकास और सुमन बैठे हैं दोनों उस टेबल पर इसी इंतजार में कि खाने में क्या मंगा है। अब वो जो बड़ा सा मेन्यू कार्ड उनके सामने रखा है वो तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या मंगा है, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है और वो ठहरे देसी और बड़े सिंपल से बड़े भोले से लोग, तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खाना मंगाया जाए यहाँ पे। तो वो विकास जो है एक वेटर को आवाज देता है भैया जी आइए, तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखने लगते हैं। तो दूर दो टेबल छोड़कर खड़ा हुआ एक वेटर समझ जाता है कि ये नए नए आए हैं, इनको शायद से तौर तरीका नहीं पता या ये नहीं जानते कि वेटर कह के पुकारा जाता है। तो वो वेटर संदेश हाँ सॉरी तो वो वेटर विकास और सुमन के पास चला जाता है और कहता है कि बताइए आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। विकास बड़े धीमी आवाज में उस वेटर से कहता है भैया जी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और ये जो

सुमन जी कहती है हमें वो पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर, पालक पनीर। तो विकास वेटर को अब ऑर्डर देने लगते हैं, एक काम कीजिए आप, मटर पनीर होगा आपके पास? तो वेटर कहता है हाँ, तो मटर पनीर लाए। पालक पनीर होगा आपके पास? हाँ है, तो एक पालक पनीर और रोटी लाइएगा, रोटी आठ आठ टू रोटी लाइएगा, आठ। और दाल चावल मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिल जाएगा, हाँ तो वो लाइए। और हाँ हाँ सुनिए, ये ऑर्डर सब लाने, ये सब खाना लाने से पहले वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है शिकंजी, शिकंजी वो दो लाइएगा, दो बड़ी वाली बॉटल में जो आती है, एक मैडम जी के लिए और एक हमारे लिए। और जब खाना पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो मैडम जी के लिए चार चार आइसक्रीम लाना, चार। तो वो वेटर जानने लग जाता है कि ये पहली बार आए हैं, और बड़ा खुश होता है वो वेटर ये देखकर कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से उसकी जिद पूरी करने के लिए, किस तरीके से होटल में आकर उसके लिए तरह तरह के व्यंजन का ऑर्डर दे रहा है। अब 5-10 मिनट हो जाते हैं और खाना आता नहीं है। खैर कोल्ड ड्रिंक्स तो आ जाती है, तो सुमन जी कहती है विकास जी कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रहा है, हमें तो लगा था कि हम जाएंगे और कहेंगे कि ये खाना लाओ और ये लेके आ जाएंगे, पर अब तो 10-15 मिनट हो गए, अब तक तो कुछ नहीं आया, ये सिर्फ शिकंजी ला के दिए, बस यही पी के जाना है हमें। तो इतने में विकास उस वेटर को दोबारा बुलाता और कहता है कि भैया जी अभी तक खाना नहीं आया। तो वेटर विकास से कहता है कि सर आपको शायद पता नहीं है, पर यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर देते हो तो लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आपका खाना आने के लिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हो तो फिर वो ऑर्डर हम लेने के बाद वो खाना पकाया जाता है फिर लाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका खाना अभी हम लाके आपको परोसते हैं। तो 15 मिनट के बाद वेटर सारा ऑर्डर लाता है, विकास और सुमन खाना खाना शुरू करते हैं। रोटी का एक एक निवाला जैसे मानो एक एक तारे विकास ने तोड़ कर लाए और सुमन के हाथ में दिए, जैसे किसी भी प्रेमिका को प्रेमी एक एक तारा तोड़कर लाके देता है और उसके हाथ में रखता है, और प्रेमिका कितनी खुश होती होगी वो एक एक तारे को देखकर, ठीक उसी तरह रोटी का एक एक निवाला सुमन को वही याद दिला रहा था कि मानो विकास ने आसमान से न जाने कितने तारे तोड़कर लाए हैं और आज उसके कदमों में बिछा दिए, आसमान का पूरा चांद उसके कदमों में बिछा दिया उसकी वो एक ख्वाहिश पूरी करकर। अब खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होने के बाद आइसक्रीम आई, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई, अब आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों ने चाहा कि हाथ धोया जाए अभी, तो उतने में वेटर ने गर्म पानी से भरा हुआ बाउल उनके सामने लाके रखा और एक प्लेट में 8-9 पीसेस ऑफ लेमन्स लाके रखे। अब उनको क्या लगा वो लेमन उस बाउल में निचोड़ना है और पी लेना है, तो उसने कहा कि वेटर से विकास ने कि भैया हमने तो ये नींबू पानी ऑर्डर नहीं किया था, आपने क्यों लाया? तो वेटर हंसने लगा, बोला ये नींबू पानी नहीं है, ये जो आप कटोरा देख रहे हैं ये गर्म पानी का कटोरा है, इसमें आप अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, और आपके उंगलियों पर जो चिपचिपापन है तो ये आप नींबू अगर इस पे मसलेंगे तो ये चिपचिपापन आपका चले जाएगा, और वो हाथ में धोते रहिए, हाथ धोते रहिए उस कटोरे में। तो ये पहली बार हो रहा था विकास और सुमन के साथ, तो ये काफी अद्भुत अनुभव था उनके लिए, और वो बहुत ज्यादा एकदम एक बच्चे

तरह एक्साइटेड थे कि देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमको कहीं जाना नहीं है और हमारे हाथ धोने के लिए यहाँ पे कटोरा भी लाया जा रहा है जिसमें हम हाथ धो रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं। ये बहुत एक अलग अनुभव था उनके लिए। तो अब हाथ धो लिया, खाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया और उसके बाद बारी आई बिल देने की। तो बिल देने के लिए विकास ने कहा वेटर से कि हमें बता दीजिए कितना पैसा हुआ है तो हम दे दे और जाएं यहां से। तो वेटर चले जाता है और बिल लेके आता है, और बिल लेके आता है तो लगभग 1800 रुपए बिल हुआ होता है और विकास के पास तो 2250 रुपए है। तो वो तो खुश हो जाता है कि चलो 450 रुपए मेरे पास बच ही गया। अब वो बिल देखता है और अपनी जेब में सीधे साइड वाले पैंट की जेब में जब वो हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, तो वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो पूरा हर पार चला गया, यानी जो पैंट विकास ने पहनी है वो फटी हुई है। अब विकास बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, वो अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है, वहां पे उसे पैसे नहीं मिलते। वो पैंट के पीछे वाले जेब में हाथ डालता है, वहां उसे पैसे नहीं मिलते। वो धीरे से सुमन से कहता है कि सुमन जी, हमने आपको पैसे दिए क्या रखने? सुमन जी कहती है नहीं, आपने हमें तो पैसे नहीं दिए, आपने आपके पैंट के जेब में रखे थे ना निकलते समय। तो बीवी को कोई चिंता ना हो इस कारण विकास जोर से हंसता है, हाँ हाँ मेरे ही जेब में, मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम परेशान तो नहीं होती अगर मैं ऐसे कहूँ तो। और अंदर विकास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम 2 मिनट रुको हम आ रहे। ये कहकर विकास बाहर जाता है और देखता है कहीं वो पैसे रिक्शा से उतरते समय उसने गिराए तो नहीं या वहां गिर तो नहीं गए। तो वहां पे जाके पूरा देख के आता है पर उसे वो पैसे मिलते नहीं है। वो जहां जहां से चल के आया ठीक उसी तरीके से वहां पे फिर से दोबारा चलकर जाता है, देखता है कि पैसे उसे मिल जाए पर वो पैसे उसे मिलते नहीं है। और वो परेशान होकर 10 मिनट बाद जब फिर से दोबारा होटल में आता है तो वेटर भैया को दोबारा आवाज लगाता है कि हमारे पास पैसे थे पर हम नहीं जानते कि ये बिल भरने के लिए जो हम आपको पैसे देने वाले थे ये कहाँ गिर गए। हम घर से लेके निकले थे पैसे, पैसे हमारे पास मौजूद थे पर जब हमने या आपको पैसे भरने के लिए जेब में हाथ डाला तो हमारी पतलून की जेब फटी निकली। विकास वेटर से कहता है, वेटर कहता है कि देखो हम जानते हैं ये तुम्हारे हथकंडे हैं, पहले तो एकदम अच्छा अच्छा खाना खा लो और बाद में बोल दो पैसे नहीं है और कहीं से यहां से बच के निकल जाओ। हम ठीक से जानते हैं तुम गरीबों की ये सारी हरकतें, तो चुपचाप से अपना बिल भरो और जाओ यहां से, निकलो यहां से। वेटर कहता नहीं नहीं वेटर भैया, सच में हमारे पास पैसे थे, 2250 रुपए थे, हमने मेहनत से कमाए थे, हमने दो दो जगह काम करके ये पैसे कमाए थे, हमारी सुमन के लिए कमाए थे, ये पैसे थे हमारे पास, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हम घर से लेके निकले थे तो पैसा लेकर निकले थे, हमने अपनी जेब में ही रखा था ये पैसा पर हम नहीं जानते थे कि पतलून हमारी फटी हुई है, पैसे कहीं गिर गए हैं। आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। विकास गिड़गिड़ाकर रोकर विनती करता है उस वेटर से कि वो उसकी बात मान जाए और किसी तरीके से सुमन और विकास को घर जाने के लिए दे दे। वेटर नहीं मानता, वेटर कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हें अब यहां पे काम करना पड़ेगा, यहां नौकरी करनी पड़ेगी।
वो अब यहाँ बर्तन मानने पड़ेंगे। खाना खाते समय तुम्हें नहीं सूझा कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अब ये सब तुम्हें सूझेगा जब तुम बर्तन मांजोगे। जब 15 दिन बर्तन मांजोगे तब जाके ये जो तुम्हारा बिल हुआ ये पूरा होगा। तो चलो उठो उठो उठो, चलो बर्तन मांजने चलो। ये कहकर वेटर विकास को अभी चेयर पर से उठाने लगता है। ये सारा मांजरा देखकर सुमन बहुत रोने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है कि ये उसी की ख्वाहिश थी जो आज उसके पति की बेइज्जती हो रही है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नहीं बताती तो शायद ये दिन कभी आता नहीं और विकास कभी उसे वहां लेकर नहीं जाता, ये सब मामला नहीं होता और विकास की इतनी बेइज्जती नहीं होती। सुमन इसी चक्कर में रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। उतने में विकास उससे कहता है कि सुमन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, हम काम करके आ रहे हैं, किए हैं ना इसके पहले भी काम, कर लेंगे थोड़ा और काम, और आपके लिए ही तो कर सकते हैं ना काम, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, धर्म पत्नी हो, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम बस ये काम खत्म करके आ ही रहे घर, आप जाइए। ये कहकर विकास सुमन को होटल के बाहर जाने पर मजबूर तो कर देता है, पर सुमन जाती नहीं है, वो होटल के बाहर ही विकास का इंतजार करती है। विकास अपने मायूस चेहरे को लेकर उस वेटर के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाता है, जहां पे पूरा बर्तन धोने का एक अलग सा डिपार्टमेंट है। वहां जाता है, देखता है तो न जाने सैकड़ों थालियां पड़ी हुई, बड़े बड़े पतीले पड़े हुए हैं, न जाने कितना सामान जो धोने के लिए पड़ा हुआ है। और वो जो वेटर होता है वो कहता है कि आज तुम्हें इतना पूरा बर्तन धोना है और रोज आके यही काम करना है आने वाले 15 दिनों तक, तब जाके तुम्हारा बिल पूरा होगा। विकास गरीब क्यों ना हो पर एक खुददार आदमी था। वो जानता था कि अगर उसने खाना खाया है और अभी उसके पास पैसे नहीं है बिल चुकाने के लिए तो वो ये काम जरूर करेगा। तो विकास अपना शर्ट उतारता, अपनी पैंट उतारता और एक लंबा सा रखा हुआ कपड़ा पहनता है ताकि उसके जो शादी के कपड़े सफारी वो गंदा ना हो, और वो कपड़ा लपेट कर एक लुंगी जो रखी हुई होती है वहां पर वो लपेट लेता है और सोचता है वही लपेट कर वो काम करेगा। अब वो लुंगी लपेट लेता है और बड़ा सा पतीला को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, ब्रश उठाता है, उस पर थोड़ी सी टिकिया लगाता है और पतीले में जैसे हाथ मांजने जाता है, वो पतीले को मांजने जाता है, उसकी नजर उठती है, जाती है अपने पैंट पर, और पैंट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पे तुरपाई की होती है पैंट को, वो हिस्सा फटा हुआ होता है, लगभग 2 से 3 इंच, और उस फटे हुए हिस्से में वो पैसे जाकर अटक जाता है जो विकास ने अपने सीधे साइड के पतलून में जो फटी हुई जेब है वहां पे जब वो डालता है तो वो पैसे कहीं गिरते नहीं है, उसी की ही पतलून के जो नीचे वाले हिस्से में जाके अटक जाता है। और तब विकास को याद आता है कि ये जो शरारत है ये और किसी की नहीं, उस अलमारी में घूमते फिरते हुए उसके घर में टहलते हुए चूहों की है। ये चूहे ही थे जिन्होंने उसका जेब कतर दिया और ये चूहे ही थे जिन्होंने वो तुरपाई को काट दिया था और उस तुरपाई में वो पैसे जा अटके थे। तो विकास जब वो पैसे देखता है तो इतना ज्यादा खुश होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है जैसे मानो उसने आसमान पा लिया हो, जैसे मानो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जैसे मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। इतना जोर से चीखता है
और जाकर सीधे वो पैसे लेता है। वो पैसे अब वो पैंट में नहीं डालकर अपनी शेरवानी के ऊपर वाले हिस्से में रखता है, शेरवानी पहनता और आता है वेटर के पास और उससे कहता है, भैया जी हम आपसे कह रहे थे ना कि पैसे थे हमारे पास और पैसे है हमारे पास, ये देखिए ये पैसे जो है हमारे तुरपाई में अटके हुए थे पैंट के नीचे वाले हिस्से में, शायद वो चूहों ने कतर दिया था और हमारी जेब भी, हम झूठ नहीं कह रहे थे आपसे, अब ये आपका पैसा लीजिए खाने का और हमें जाने दीजिए, हमारी सुमन हमारा बाहर इंतजार कर रही है, न जाने कितनी रो रही होगी वो। और ठीक इसी तरह विकास वो बिल पे करके जब बाहर आता है तो सुमन रोती हुई उस होटल के बाहर जो एक छोटा सा मंदिर है वहां पे रोती हुई ये प्रार्थना में लगी हुई है कि बस जल्द से जल्द उसका पति विकास बाहर आ जाए। और विकास जब बाहर आता है तो विकास उससे वो पूरा वाकया बयान करता है कि कैसे कैसे उससे वो पैसे फिर मिले और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बचे हुए 450 रुपए जो होते हैं उसके पास वो पैसे विकास सुमन के हाथों में देता और कहता है कि लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास ही होना चाहिए, मेरे पास आप वही काफी है, आप ही लक्ष्मी को अपने पास ही रखें। और दोनों खुश होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों कहानियां हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देती है कि जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो, जैसे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और हम बस यही कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी तकलीफ हमारी परेशानी खत्म हो जाए, और अचानक से एक ऐसा रास्ता खुलता है कि शायद हमने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की होती और वहां से हमारी उस परेशानी का हल आता है। वो कहते हैं ना जब भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो 10 दरवाजे खुलता है, ठीक उसी तरीके से हुआ विकास और सुमन की कहानी में, जहां उन्हें लगा कि सारे दरवाजे बंद है, अब कोई ये परेशानी खत्म ही नहीं होगी, ये परेशानी टल ही नहीं सकती, ये परेशानी का कोई हल ही नहीं है, और अचानक से एक ऐसा हल आया इस कहानी में कि जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जिसकी कल्पना ना शायद सुमन ने की, ना विकास ने की, ना वेटर ने की, ना किसी ने की, पर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी नियति, आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम पर ला खड़ा करती है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वो एक पल में हल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कहानी को सुनने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा दोबारा एक नई कहानी लेकर, तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में घर कर जाए।

दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज ये 26 स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में, हमारे शो में जिसका नाम है कहानियों का गुल्लक, जहाँ पे हम इस गुल्लक में रोज एक एक नई कहानी डालते हैं और इस गुल्लक को भरना चाहते हैं कहानी। तो हम आए हैं एक ऐसी कहानी लेकर, कहानी जो हमारी जिंदगी को, और इस कहानी का नाम है सच का सुख। कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों के सामने खड़ा करते हैं, एक रास्ता वो होता है जो दुनिया हमें दिखाती है और दूसरा रास्ता वो होता है जो हमारा दिल हमें दिखाता है। इन दोनों रास्तों के बीच खड़ा होकर सही फैसला करना इतना मुश्किल होता है जैसे एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ हुआ, पर यही इंसान की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है, यह कहानी कबीर। कबीर बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब उसके मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे,

गायक ने इसे गाया होगा और उस संगीत करने से संगीत में सजे हो। वो उन्हें इतना समझने की कोशिश करता था उन गानों को कि कभी कभी वो मोहम्मद रफी की आवाज सुनता और सोचता कि कोई इंसान इतना दर्द कैसे बयां कर सकता है, इतनी मोहब्बत सिर्फ आवाज से कैसे बयां कर सकता है। वो सोचता कि मोहम्मद रफी कैसे जान जाते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है और हमारे वो दिल के सुर, हमारे दिल के वो तार कैसे छेड़ लेते हैं। जब कभी वो किशोर कुमार जी को सुनता और मुस्कुरा देता तो उसे लगता है जैसे किशोर कुमार वो गाना गा नहीं, उस गाने को अपनी जिंदगी समझ। और जब कभी वो आरती धवन के संगीत

माल और उन सारे वाक्यों को एक गाने में संजोर कर उसको एक गाने में पिरो देना, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी माला में मोती को पिरोया जाता है। फिर जब कभी वो एआर रहमान के गाने सुनता तो उसकी आंखें बंद हो जाती। इतना सोलफुल, इतना सूदिंग, इतना इंकरेजिंग सॉन्ग एआर रहमान साहब बना कैसे देते हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं ना, जब 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और पूरे देश में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था, जय हो जय हो जय हो जय हो, एआर रहमान का संगीत कबीर को ऐसे लगता है जैसे किसी ने हवा में रंग भर दी हो। कबीर अक्सर कहा करता था, रफी साहब से मैंने महसूस करना सीखा है, किशोर कुमार साहब से मैंने जीना सीखा है, आर डी बर्मन से मैंने सीखा है कि जिंदगी में नए नए प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और एआर रहमान साहब से तो संगीत की कोई सीमा ही नहीं थी। उसे जितना जिया जा सकता है, जितना महसूस किया जा सकता है, वो एक ऐसा दरिया है जिसमें जितना तैरा जा सकता है वो उतना ही डीप है, उतना ही खोल है उसके अंदर, उतना ही जा सकता है। कबीर के कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो था, एक लैपटॉप था, एक छोटा सा कीबोर्ड, कुछ हेडफोन्स और दीवारों पर चिपके हुए कागज। इन कागजों पर कभी कोई लाइन लिखी होती, कभी कोई धुन का आइडिया, कभी आधा लिखा गाना, कभी सिर्फ एक शब्द। कबीर के लिए संगीत सिर्फ करियर नहीं था, वो उसकी पहचान थी। उसके लिए जैसे मानो वो भक्ति थी, उसके लिए जैसे मानो वो इबादत थी। वो संगीत सिर्फ बनाता नहीं था, वो अपने संगीत से अपने भगवान को पूछता था, अपने भगवान की आराधना करता था। लेकिन कबीर का परिवार उससे बिल्कुल अलग था, जैसे मानो एक अलग दुनिया से ही आता हो। उसके पिता अरविंद मल्होत्रा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, उनका टेक्सटाइल का बड़ा कारोबार था, सालों की मेहनत से उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया था। घर एकदम आलीशान बड़ा, घर के आगे 10 से 15 लग्जरियस कार, और उनकी एक इच्छा थी कि एक दिन उनका बेटा कबीर उनका बिजनेस संभाले। लेकिन कबीर के सपने अलग थे, कबीर बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, कबीर संगीत बनाना चाहता। घर में इस बात को लेकर कई बार बातचीत हुई, लेकिन कभी किसी ने कबीर को समझने की कोशिश नहीं की, और इसी कारण उसके घर में हमेशा बहस हुआ करती थी। एक दिन रात के खाने पर अरविंद जी ने कहा, कबीर अब तुम्हें सेटल होना चाहिए। कबीर मुस्कुराया, मतलब? अरविंद जी बोले, मतलब शादी। कबीर थोड़ा चौंका था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो एक अलग ही दुनिया में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस पल वो अपने पिता को क्या जवाब दे, और खैर अगर वो जवाब भी देता तो फिर उस समय एक नई बहस और छिड़ जाती। तो कबीर ने अपने मन पे पत्थर रखा, अपने दिल पे पत्थर रखा, और सोचा कि इस बात को शायद यहीं मैं दबा देता हूँ, और वक्त और दिनों के साथ ढलते ढलते कहीं ये बात भी ढल जाएगी और उसके पिता अरविंद जी शायद उससे दोबारा ये बात न करे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कबीर को पता चला कि उसके माता पिता ऐसे ही हार नहीं मानने वाले, वो एक लड़की की तलाश में है और वो कबीर के लिए लड़की ढूंढ रहे। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, और गुजरे 15 दिन, और कबीर की माता ने कबीर से कहा कि कबीर हम लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की का नाम है मीरा, फैशन डिजाइनर है, उसका खुद का एक बुटीक है, 2 शोरूम है, और तुम याद रखना कि जैसा हम तुमको बता रहे हैं ठीक वैसा ही मीरा को तुम्हें बोलना है। कबीर ने कहा कि क्या बोलना है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें मीरा और मीरा के घर वालों को ये नहीं बताना कि तुम दिन भर अपने कमरे में बैठकर गाने बनाते हो, ये बेफिजूल वाला काम वहाँ पे नहीं बताना। तुम्हें ये बताना है कि तुम अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हो और उनके साथ ऑफिस जाते हो और उनका बिजनेस देख रहे हो, और आने वाले 1-2 सालों में तुम ये बिजनेस को ओवरटेक कर लो। कबीर शांत था, और इसके आगे की कहानी सुनते हैं हम अगले एक ब्रेक के बाद। तो देख रहे हो दोस्तों, कबीर कितना मायूस था, और इसके आगे की कहानी सुनते

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज ये शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना था कि सुमन और विकास, यानी विकास किस तरह अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करता है और कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी बीवी को होटल शालीमार लेके जाने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। अब दोनों जो होटल शालीमार पर आके पहुंच गए हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनते हैं कहानी का अगला भाग। विकास और सुमन अब होटल के बाहर खड़े हैं, एक अलीशान होटल जो मुंबई में किसी JW मैरिट होटल से कम नहीं, ठीक उसी तरह। दोनों बाहर खड़े, दोनों के मन में न जाने कितने अनगिनत सवाल है, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें कोई ना दे सके, वो खुद भी नहीं जानते कि इन सवालों का जवाब ढूंढे कहां से। एक जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन पे आ गया था, जो सोशल टाबू हो जाता है कि गरीब लोग बड़े होटल में नहीं जा सकते। हाँ, जाने शायद बचपन में उन्होंने ये सुना हो तो इसीलिए वो जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे उस होटल की ओर, उनके दिल में ना जाने कितनी कश्मकश, कितने सवाल, कितनी बेचैनियां उमड़ रही थी अंदर, एक सैलाब उमड़ रहा था कि वो सच में जाए या ना जाए। सुमन ने विकास का हाथ थामा और कहा कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? विकास ने जवाब दिया। वो क्या है ना कि आप तो जानते ही हैं कि हम कितने गरीब हैं और यहाँ पे आने वाले सारे अमीर, तो क्या हमारा जाना सही होगा? लोग हमें किस नजर से देखेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए घर? बस धीमी आवाज से सुमन ने कहा यह। भला क्यों हमें लोग बुरी नजर से देखेंगे या ऊंच नीच वाली नजर से देखेंगे? हमारे पास पैसे है भाई, और हम थोड़ी किसी का फ्री में खाना खाने आए हैं ना, हम तो पैसे लेके आए हैं, और पैसे है तो खाना खाया जा सकता है। यहां भी क्या, लंदन में भी खाना खाया जा सकता है अगर पैसे है तुम्हारे पास। बड़ी मजाकिया तौर पर विकास ने सुमन से कहा, और यही कुछ चीजें थी, यही विकास का कहा हुआ था जो सुमन के अंदर उसने हौसला पैदा किया, और दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, वो जाएंगे अंदर। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कदम दोनों के बढ़ते रहे होटल की ओर, और जब होटल के दरबान के पास पहुंचे तो विकास ने अपनी जेब में से, ऊपर वाली जेब में से, शर्ट की जेब में से 50 रुपए निकालकर, जो शायद उसने पूरे दिन भर में कमाया था बूट पॉलिश करके, वो 50 रुपए जो उसने उसके ऊपर की जेब में रखे थे वो निकालकर रख दिया दरबान के हाथ में, ताकि दरबान उन दोनों को अंदर जाने से रोके नहीं। अब ये बात विकास को संदेश ने बताई थी कि अगर तुम कभी भी किसी बड़े होटल में जाते हो और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहनावे से या तुम्हारे रंग रूप से कोई तुम्हें बाहर निकाले, तो सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना कि किसी भी होटल के दरबान को कुछ पैसे उसके हाथ में रख दो, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं, वो आपको बड़ा आदमी समझेगा। और यही विकास ने किया, और दरबान के हाथ में 50 रुपए रख दिए, सुमन और विकास दोनों अब अंदर चले गए। अब दोनों अंदर चले गए, देख रहे हैं कि जाके कहां बैठे कहां बैठे कहां बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेबल खाली है लेकिन उनके ऊपर एक लंबा सा कुछ रखा है, उसके ऊपर
कुछ लिखा हुआ है, तो उसी एक ऐसे बड़े से टेबल पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है रिजर्व जैसा, वहां पर सुमन जाके बैठने की कोशिश करती है, उतने में पीछे से एक वेटर आता है, मैडम मैडम रुक जाइए, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। तो सुमन एक मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, किसी ने बुक किया, ये क्या होता है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, उसने हमें पहले ही सूचना कर दी है कि वो यहाँ पे आएंगे और ये टेबल उनके लिए ही बुक है, आप एक काम कीजिए वो वहां पे देखिए टेबल खाली है, वो किसी के लिए बुक नहीं है, आप और सर वहां पर जाके बैठिए। अब जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति ने विकास को और सर बोला था, तो विकास काफी खुश हुआ कि हाँ चलिए किसी ने तो हमें सर बोला। अब विकास और सुमन बैठे हैं दोनों उस टेबल पर इसी इंतजार में कि खाने में क्या मंगा है। अब वो जो बड़ा सा मेन्यू कार्ड उनके सामने रखा है वो तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या मंगा है, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है और वो ठहरे देसी और बड़े सिंपल से बड़े भोले से लोग, तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खाना मंगाया जाए यहाँ पे। तो वो विकास जो है एक वेटर को आवाज देता है भैया जी आइए, तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखने लगते हैं। तो दूर दो टेबल छोड़कर खड़ा हुआ एक वेटर समझ जाता है कि ये नए नए आए हैं, इनको शायद से तौर तरीका नहीं पता या ये नहीं जानते कि वेटर कह के पुकारा जाता है। तो वो वेटर संदेश सॉरी तो वो वेटर विकास और सुमन के पास चला जाता है और कहता है कि बताइए आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। विकास बड़े धीमी आवाज में उस वेटर से कहता है, भैया जी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और ये जो बड़ा सा ये जो कार्ड रखा है आपने, हमें पढ़ना नहीं आता तो हम नहीं जानते इसमें क्या है, पर आप अगर हमारी कुछ मदद कर दें तो हमें क्या खाना है हम आपको बता देंगे, तो उस तरीके के पकवान का आपके पास कुछ हो तो जरूर ले आइएगा। तो वेटर हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ बताइए सर आपको क्या चाहिए, मैं वो चीजें अगर हमारे पास होगी तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। विकास कहता है बताओ सुमन जी क्या खाना है आपको। सुमन जी कहती है हमें वो पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर, पालक पनीर। तो विकास वेटर को अब ऑर्डर देने लगते हैं, एक काम कीजिए आप मटर पनीर होगा आपके पास। तो वेटर कहता है हाँ, तो मटर पनीर लाए। पालक पनीर होगा आपके पास? हाँ है, तो एक पालक पनीर और रोटी लाइएगा, रोटी आठ रोटी लाइएगा। और दाल चावल मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिल जाएगा, हाँ तो वो लाइए। और हाँ हाँ सुनिए, ये ऑर्डर सब लाने, ये सब खाना लाने से पहले वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है शिकंजी, वो दो लाइएगा, दो बड़ी वाली बॉटल में जो आती है, एक मैडम जी के लिए और एक हमारे लिए। और जब खाना पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैडम जी के लिए चार आइसक्रीम लाना, चार। तो वो वेटर जानने लग जाता है कि ये पहली बार आए हैं और बड़ा खुश होता है वो वेटर ये देखकर कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से
उसकी जिद पूरी करने के लिए किस तरीके से होटल में आकर उसके लिए तरह तरह के व्यंजन का ऑर्डर दे रहा है। अब 5-10 मिनट हो जाते हैं और खाना आता नहीं है। खैर कोल्ड ड्रिंक्स तो आ जाती है, तो सुमन जी कहती है, विकास जी कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रहा है, हमें तो लगा था कि हम जाएंगे और कहेंगे कि ये खाना लाओ और ये लेके आ जाएंगे, पर अब तक 10-15 मिनट हो गए, अब तक तो कुछ नहीं आया, ये सिर्फ शिकंजी ला के दिए, बस ये पी के जाना है हमें। तो इतने में विकास उस वेटर को दोबारा बुलाता और कहता है कि भैया जी अभी तक खाना नहीं आया। तो वेटर विकास से कहता है कि सर आपको शायद पता नहीं है, पर यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर देते हो तो लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आपका खाना आने के लिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हो तो फिर वो ऑर्डर हम लेने के बाद वो खाना पकाया जाता है फिर लाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका खाना अभी हम ला के आपको परोसते हैं। तो 15 मिनट के बाद वेटर सारा ऑर्डर लाता है, विकास और सुमन खाना खाना शुरू करते हैं। रोटी का एक एक निवाला जैसे मानो एक एक तारे विकास ने तोड़ कर लाए और सुमन के हाथ में दिए, जैसे किसी भी प्रेमिका को प्रेमी एक एक तारा तोड़कर लाके देता है और उसके हाथ में रखता है और प्रेमिका कितनी खुश होती होगी वो एक एक तारे को देखकर, ठीक उसी तरह रोटी का एक एक निवाला सुमन को वही याद दिला रहा था कि मानो विकास ने आसमान से न जाने कितने तारे तोड़कर लाए हैं और आज उसके कदमों में बिछा दिए, आसमान का पूरा चांद उसके कदमों में बिछा दिया उसकी वो एक ख्वाहिश पूरी करकर। अब खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होने के बाद आइसक्रीम आई, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई, अब आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों ने चाहा कि हाथ धोया जाए अभी, तो उतने में वेटर ने गर्म पानी से भरा हुआ बाउल उनके सामने लाके रखा और एक प्लेट में 8-9 पीसेस ऑफ लेमन लाके रखे। अब उनको क्या लगा वो लेमन उस बाउल में निचोड़ना है और पी लेना है, तो उसने कहा कि वेटर से विकास ने कि भैया हमने तो ये नींबू पानी ऑर्डर नहीं किया था, आपने क्यों लाया? तो वेटर हंसने लगा, बोला ये नींबू पानी नहीं है, ये जो आप कटोरा देख रहे हैं ये गर्म पानी का कटोरा है, इसमें आप अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, और आपके उंगलियों पर जो चिपचिपापन है तो ये आप नींबू अगर इस पे मसलेंगे तो ये चिपचिपापन आपका चले जाएगा, और वो हाथ में धोते रहिए, हाथ धोते रहिए उस कटोरे में। तो ये पहली बार हो रहा था विकास और सुमन के साथ, तो ये काफी अद्भुत अनुभव था उनके लिए और वो बहुत ज्यादा एकदम एक बच्चे की तरह एक्साइटेड थे कि देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमको कहीं जाना नहीं है और हमारे हाथ धोने के लिए यहाँ पे कटोरा भी लाया जा रहा है जिसमें हम हाथ धो रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, ये बहुत एक अलग अनुभव था उनके लिए। तो अब हाथ धो लिया, खाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया और उसके बाद बारी आई बिल देने की। तो बिल देने के लिए विकास ने कहा वेटर से कि हमें बता दीजिए कितना पैसा हुआ है तो हम दे दे और जाएं यहां से। तो वेटर चले जाता है और बिल लेके आता है, और बिल लेके आता है तो लगभग 1800 रुपए बिल हुआ होता है और विकास के पास तो 2250 रुपए है, तो वो तो खुश हो जाता है कि चलो 450 रुपए मेरे पास बच ही गए। अब वो बिल देखता है और अपनी जेब में सीधे साइड वाले पैंट की जेब में जब वो हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए तो वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो पूरा हर पार चला गया, यानी जो पैंट विकास ने पहनी है वो फटी हुई है। अब विकास बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है
वो अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है, वहां पे उसे पैसे नहीं मिलते। वो पैंट के पीछे वाली जेब में हाथ डालता है, वहां उसे पैसे नहीं मिलते। वो धीरे से सुमन से कहता है कि सुमन जी, हमने आपको पैसे दिए क्या रखने? सुमन जी कहती है नहीं, आपने हमें तो पैसे नहीं दिए, आपने आपके पैंट के जेब में रखे थे ना निकलते समय। तो बीवी को कोई चिंता ना हो इस कारण विकास जोर से हंसता है, हाँ हाँ मेरे ही जेब में, मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम परेशान तो नहीं होती अगर मैं ऐसे कहूँ तो। और अंदर विकास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम दो मिनट रुको, हम आ रहे। ये कहकर विकास बाहर जाता है और देखता है कहीं वो पैसे रिक्शा से उतरते समय उसने गिराए तो नहीं या वहां गिर तो नहीं गए। तो वहां पे जाके पूरा देख के आता है पर उसे वो पैसे मिलते नहीं है। वो जहां जहां से चल के आया ठीक उसी तरीके से वहां पे फिर से दोबारा चलकर जाता है, देखता है कि पैसे उसे मिल जाए पर वो पैसे उसे मिलते नहीं है। और वो

इंस्पेक्टर कहता है कि देखो हम जानते हैं ये तुम्हारे हथकंडे है, पहले तो एकदम अच्छा अच्छा खाना खा लो और बाद में बोल दो पैसे नहीं है और कहीं से यहाँ से बच के निकल जाओ। हम ठीक से जानते हैं तुम गरीबों की ये सारी हरकतें, तो चुपचाप से अपना बिल भरो और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। वेटर कहता नहीं नहीं वेटर भैया, सच में हमारे पास पैसे थे, 2250 रुपए थे, हमने मेहनत से कमाए थे, हमने दो दो जगह काम करके पैसे कमाए थे, हमारे सुमन के लिए कमाए थे, ये पैसे थे हमारे पास, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हम घर से लेकर निकले थे तो पैसा लेकर निकले थे, हमने अपनी जेब में ही रखा था ये पैसा, पर हम नहीं जानते थे कि पतलून हमारी फटी हुई है, पैसे कहीं गिर गए हैं। आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। विकास गिड़गिड़ाकर रोकर विनती करता है उस वेटर से कि वो उसकी बात मान जाए और किसी तरीके से सुमन और विकास को घर जाने के लिए दे दे। वेटर नहीं मानता, वेटर कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हें अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें अब यहाँ बर्तन मानने पड़ेंगे, खाना खाते समय तुम्हें नहीं सूझेगा कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अब ये सब तुम्हें सूझेगा जब तुम बर्तन मांजोगे, जब 15 दिन बर्तन मांजोगे तब जाके ये जो तुम्हारा बिल हुआ ये पूरा होगा। तो चलो उठो उठो उठो, चलो बर्तन मांजने चलो। ये कहकर वेटर विकास को अभी चेयर पर से उठाने लगता है। ये सारा मांजा देखकर सुमन बहुत रोने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है कि ये उसी की ख्वाहिश थी जो आज उसके पति की बेइज्जती हो रही है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नहीं बताती तो शायद ये दिन कभी आता नहीं और विकास कभी उसे वहां लेकर नहीं जाता, ये सब मामला नहीं होता और विकास की इतनी बेइज्जती नहीं होती। सुमन इसी चक्कर में रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। उतने में विकास उससे कहता है कि सुमन जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, हम काम करके आ रहे हैं, किए है ना इसके पहले भी काम, कर लेंगे थोड़ा और काम, और आपके लिए ही तो कर सकते हैं ना काम, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम बस ये काम खत्म करके आ ही रहे घर, आप जाइए। ये कहकर विकास सुमन को होटल के बाहर जाने पर मजबूर तो कर देता है, पर सुमन जाती नहीं है, वो होटल के बाहर ही विकास का इंतजार करती है। विकास अपने मायूस चेहरे को लेकर उस वेटर के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाता है, जहां पे पूरा बर्तन धोने का एक अलग सा डिपार्टमेंट है। वहां जाता है, देखता है तो न जाने सैकड़ों थालियां पड़ी हुई, बड़े बड़े पतीले पड़े हुए हैं, न जाने कितना सामान जो धोने के लिए पड़ा हुआ है, और वो जो वेटर होता है वो कहता है कि आज तुम्हें इतना पूरा बर्तन धोना है और रोज आके यही काम करना है आने वाले 15 दिनों तक, तब जाके तुम्हारा बिल पूरा होगा। विकास गरीब क्यों ना हो पर एक खुददार आदमी था, वो जानता था कि अगर उसने खाना खाया है और अभी उसके पास पैसे नहीं है बिल चुकाने के लिए तो वो ये काम जरूर करेगा। तो विकास अपना शर्ट उतारता, अपनी पैंट उतारता और एक लंबा सा रखा हुआ कपड़ा पहनता है ताकि उसके जो शादी के कपड़े सफारी वो गंदा ना हो, और वो कपड़ा लपेट कर एक लुंगी जो रखी हुई होती है वहां पर वो लपेट लेता है और सोचता है वही लपेट कर वो काम करेगा। अब वो लुंगी लपेट लेता है और बड़ा सा पतीला को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, ब्रश उठाता है, उस पर थोड़ी सी टिकिया लगाता है और पतीले में जैसे हाथ मांजने जाता है, वो पतीले को मांजने जाता है।

की नजर उठती है, जाती है अपने पैंट पर, और पैंट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पे तुरपाई की होती है पैंट को, वो हिस्सा कटा हुआ होता है लगभग 2 से 3 इंच, और उस फटे हुए हिस्से में वो पैसे जाकर अटक जाता है जो विकास ने अपने सीधे साइड के पतलून में जो फटी हुई जेब है वहां पे जब वो डालता है तो वो पैसे कहीं गिरते नहीं है, उसी की ही पतलून के जो नीचे वाले हिस्से में जाके अटक जाता है। और तब विकास को याद आता है कि ये जो शरारत है ये और किसी की नहीं, उस अलमारी में घूमते फिरते हुए उसके घर में टहलते हुए चूहों की है। ये चूहे ही थे जिन्होंने उसका जेब कतर दिया, और ये चूहे ही थे जिन्होंने वो तुरपाई को काट दिया था, और उस तुरपाई में वो पैसे जा अटके थे। तो विकास जब वो पैसे देखता है तो इतना ज्यादा खुश होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है जैसे मानो उसने आसमान पा लिया हो, जैसे मानो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जैसे मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। इतना जोर से चीखता है और जाकर सीधे वो पैसे लेता है। वो पैसे अब वो पैंट में नहीं डालकर अपनी शेरवानी के ऊपर वाले हिस्से में रखता है, शेरवानी पहनता है और आता है वेटर के पास और उससे कहता है, भैया जी हम आपसे कह रहे थे ना कि पैसे थे हमारे पास और पैसे हैं हमारे पास, ये देखिए ये पैसे जो है हमारे तुरपाई में अटके हुए थे पैंट के नीचे वाले हिस्से में, शायद वो चूहों ने कतर दिया था, और हमारी जेब भी, हम झूठ नहीं कह रहे थे आपसे, अब ये आपका पैसा लीजिए खाने का और हमें जाने दीजिए, हमारी सुमन हमारा बाहर इंतजार कर रही है, जाने कितनी रो रही होगी वो। और ठीक इसी तरह विकास वो बिल पे करके जब बाहर आता है तो सुमन रोती हुई उस होटल के बाहर जो एक छोटा सा मंदिर है वहां पे रोती हुई ये प्रार्थना में लगी हुई है कि बस जल्द से जल्द उसका पति विकास बाहर आ जाए। और विकास जब बाहर आता है तो विकास उससे वो पूरा वाक्या बयान करता है कि कैसे कैसे उससे वो पैसे फिर मिले, और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, और बचे हुए 450 रुपए जो होते हैं उसके पास वो पैसे विकास सुमन के हाथों में देता और कहता है कि लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास ही होना चाहिए, मेरे पास आप वही काफी है, आप ही लक्ष्मी को अपने पास ही रखें, और दोनों खुश होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों कहानियां हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देती है कि जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो, जैसे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, और हम बस यही कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी तकलीफ हमारी परेशानी खत्म हो जाए, और अचानक से एक ऐसा रास्ता खुलता है कि शायद हमने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की होती, और वहां से हमारी उस परेशानी का हल आता है। वो कहते हैं ना जब भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता है, ठीक उसी तरीके से हुआ विकास और सुमन की कहानी में, जहां उन्हें लगा कि सारे दरवाजे बंद है, अब कोई ये परेशानी खत्म ही नहीं होगी, ये परेशानी टल ही नहीं सकती, ये परेशानी का कोई हल ही नहीं है, और अचानक से एक ऐसा हल आया इस कहानी में कि जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जिसकी कल्पना ना शायद सुमन ने की, ना विकास ने की, ना वेटर ने की, ना किसी ने की, पर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी नियति, आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम पर ला खड़ा करती है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वो एक पल में हल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कहानी को सुनने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा दोबारा एक नई कहानी लेकर, तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में घर कर जाए।

0: Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. In celebrity show, myself, Ajay Tejaswini, would like to introduce a great singer. He's presently in US and working in various aspects of music. So we have with us Dr. Rish. Hi Rish.
1: Hello.
0: welcome to Bombay. Welcome to India, first of all. Welcome to Bombay and then welcome to Acharya 90 FM. And would like to thank Mangesh also. Mangesh's friend is Dr. Rish, and they are both connected, musically connected. And he introduced Dr. Rish to us. And so I'll be taking a short 30 minutes interview with him. So we'll know about his journey, his musical journey, of course. So shall we start, Rish?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: So how are you feeling coming to Bombay, and how is the vibes?
1: Oh.
0: Bombay vibes. In hot summer you have come.
1: Yeah, exactly. So सबसे पहले तो इधर या comparatively थोड़ी गर्मी तो है. I think it was like almost 40s दो दिन पहले, but it's like it's totally पंजाब जैसा तो नहीं है. बहुत fast paced है और you know it's like a melting pot. यहाँ पे इतना cultural blending है, हर तरह के लोग मिलते हैं, you know, और it's too much lively. I would say जैसे US में सारी रात हम बड़े शहरों में देखते हैं कि लोग सोते नहीं है, तो मुंबई में भी you know रात को जब मर्जी निकल जाओ,
0: तो जो मर्जी करो.
1: Right.
0: Yes,
1: and obviously yes, compared to other cities, sort of young crowd, they obviously they feel safe. That's why bahar ladke ladkiyan se aaram se ghoom le, so there is less crime rate. This is my personal
0: So Rish, would like to start from your childhood. How was your upbringing? मतलब बचपन में आप सब बच्चे तो शैतानी होते हैं, तो आप कैसे थे? एंड पंजाबी मुंडा मतलब बहुत शैतानी हम बोलते हैं वैसा तो, बट यू साउंड वेरी कूल काम, थोड़ा ऐसा लगता है. पता नहीं आप कैसे हो, लेकिन आपके बारे में बताओ थोड़ा.
1: या श्योर. सो आई थिंक इसमें तो मैं बोलता ही जाऊंगा, फील फ्री टू स्टॉप मी फॉर एनी क्वेश्चंस, बट या आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. So I am based out of Dallas and Miami in US, but मैं चंडीगढ़ में बॉर्न हुआ हूँ और US में मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं. एंड मैंने म्यूजिक सीखा है बचपन से ही, एंड देन आई वेंट टू US और उधर मैं विद माय ऐसे कॉन्टेक्ट्स, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने हिप हॉप में, दैट हमने बहुत अच्छा और यूनिक साउंड क्रिएट करने की कोशिश की है, एंड वी बीन सक्सेसफुल. बट देर आर लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स दैट दोस आर अपकमिंग दिस ईयर, एंड देयर विल बी सम सरप्राइजेस टू फॉर द ऑडियंस. एंड our team is working really hard to make sure like we reach the right audience. और हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को हम और भी बढ़ाना चाहते हैं. एंड या गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड, सो मैं इतना काम लग रहा हूँ, बट आई हैव बीन थ्रू लॉट ऑफ क्रेस एंड ट्रफ्स अपनी लाइफ में. लाइक मैं ऐसा नहीं था बचपन से, स्कूल में ही मैं तो सबसे शरारती बच्चा था. आई यूज टू हमेशा क्लास के बाहर खड़ा रहता था, बट
0: बैक बेंचर्स
1: यू कैन से, या बट मेरे टीचर्स
0: स्कूल जाते थे. स्कूल जाते थे?
1: अच्छा,
0: तो वो बड़ी बात है, आप स्कूल जा रहे थे. एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के लिए तो जाना ही पड़ा.
1: बट वो बताना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे टीचर्स बहुत हैरान होते थे कि यार तू इतना शरारती है, तू यू आर ऑलवेज आउट ऑफ द क्लास, तू कैसे मार्क्स कैसे आते हैं तेरे. तो कंपेयर टू अदर्स लाइक मैं कम टाइम में पढ़ के तो आई यूज टू लाइक
0: एक्सेल वेल.
1: या तो और टीचर्स ये भी कहते थे कि इससे बच के रहो, ये खुद तो पढ़ लेता. So that's how I was like. I just like thrill. So मुझे ऐसे normally बैठ के ऐसे you know मुझे थोड़ा boring सा feel होता था, तो मैं बाहर घूमना और पढ़ना, like मैं सोता भी बहुत कम था और सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना, खेलते रहना और music भी कुछ ना कुछ activity करते रहना. तो
0: so you come in that brilliant category, मतलब जो मतलब कुदरती कुछ लेके आए हैं और दिमाग है उनके पास, इसलिए आप बिना पढ़े भी पास हो जाते थे एंड गुड मार्क्स भी लाते थे, we can say that.
1: Right. मतलब मैं खुद तो नहीं कहूंगा बट आई वुड से यस.

0: मेरे MBBS में एडमिशन जब हुआ तो देन एक्चुअली आई स्टार्टेड लर्निंग. बचपन से भी मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था, बट जब मेरा पहला गोल था कि मुझे MBBS में एडमिशन लेना है, तो जब फर्स्ट ईयर से आई क्रैक्ड इट, तो मैंने कहा साथ म्यूजिक विल स्टे. तो मैंने छोड़ा नहीं, मतलब ऐसे परफॉर्म भी करता था, बट जस्ट क्यूरियस टू लर्न मोर, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग एंड कंपोजिंग में आपको सीखना भी जरूरी है. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक. और या सॉन्ग राइटिंग में कंपोजिशन इज प्लेज अ वेरी बिग रोल.
1: तो वॉट एवर यू इमेजिन यू पुट इट ऑन पेपर्स,
0: राइट? और इट्स लाइक सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग भी होती है, तो अपने आप संगीत बनता है. ऐसा मेरा सोचना था, तो इट प्लेड आउट वेल. तो मैं कॉलेज में परफॉर्म भी करता था और रैप म्यूजिक प्लस सिंगिंग भी. तो ये दोनों मेरी लाइफ में एक साथ ही चले हैं. कुछ आपको सुनने को बहुत लोगों से मिलेगा कि यार ये तो सिर्फ रैपर है, ये और सिंगर्स अलग होते हैं, बट हमारा अलग हमारी सोच है कि जो हमें साउंड प्रेजेंट करना है तो हमें क्लासिकल म्यूजिक भी रखना है. जैसे आप कई रैप सॉन्ग्स में आप सुनोगे अपकमिंग में, हमने सरगम्स डाली हुई हैं, सारेगम ऑल
1: मेलोडीज,
0: मेलोडीज एंड सरगम्स डाली हुई हैं, एंड ऑल द क्लासिकल अलाप्स यूज किए हैं, एंड स्टोरी राइटिंग है और रैप म्यूजिक भी है, और साउंड पूरा इंटरनेशनल हमने डाला उसमें. तो दैट इज वन थिंग. तो यूनिक अबाउट आवर ब्रांड दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. सो Hopefully, अभी तक अच्छा चल रहा है and it's going to be really big and global.
1: Yeah, definitely. अभी सिंगिंग की बात हो रही है, आप सोलो सिंगिंग बहुत करते थे कॉलेज टाइम्स में, स्कूल टाइम्स में, तो थोड़ा हमारे इधर भी थोड़ा गुनगुनाएंगे तो हमें हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा. Anything, any part of your albums you can sing for some time?
0: Yeah, of course. तो आप क्या सुनना चाहेंगे? Rap या?
1: I think blended with Indian classical. Yeah, something with Indian classical.
0: Okay. हमारा एक लेटेस्ट सॉन्ग जो हम कल शूट कर रहे थे, तो इट्स जस्ट गिटार पे सिंपल सिंगिंग है, तो इट्स वेरी प्योर एंड सोलफुल ट्रैक जो कि हम जल्दी रिलीज कर रहे हैं अप्रैल में. तो मैं उसकी दो लाइंस सुना देता हूँ.

0: Welcome after the short break. You're listening to Acharya 90 FM, your own radio. Myself, Tejaswini, in Celebrity Show. We have invited Dr. Rish. He's a well-known singer, popular singer from US, and he has recently come to India for 2-3 weeks, and he's sharing his journey, musical journey, especially with Acharya 90 FM. So, Rish, I would like to know, in India, you pursued music and you started experimenting on music. So, when you thought of going abroad, specifically, as you said, you're residing in US now. So, how was that journey? What came to your mind कि आपको कब लगा कि हमें नहीं इंडिया में रह के मतलब बहुत सारे लोग बॉम्बे आते हैं अपना करियर बनाने के लिए लेकिन आपने तो बॉम्बे का ही नहीं आपने तो US का सोचा US जाने का ख्याल कैसे आया दिल में?
1: So, yes, US का ख्याल तो पहले से ही था.
0: अच्छा, okay.
1: जब मैंने अपना बैचलर्स MBBS स्टार्ट किया तब मैंने रैप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया. फर्स्ट ईयर से ही मैंने आई वाज परफॉर्मिंग एमिनेम सॉन्ग. तब इंडिया में लिंकिन पार्क भी बहुत चलता था तो मैं खुद के साथ साथ बड़े सिंगर्स और रैपर्स के सॉन्ग भी परफॉर्म करने लग गया. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मैं अपनी डिग्री खत्म करूँ और कैसे US में मूव हो जाऊँ. तो मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाने शुरू किए. मैंने प्लानिंग स्टार्ट की कि कैसे मैं अपना काम भी जो मैं कर रहा हूँ एज अ फिजिशियन इसमें से मैं कैसे ट्रांजिशन करूँगा म्यूजिक में. आई कुड डू इट लाइक सब कुछ छोड़ के भी कर सकता था मैं बट आई डिड
0: यू डिडंट डू दैट बिकॉज वी नीड ब्रेड एंड बटर कुछ
1: यस
0: पोवा सब है बोलिया
1: फॉर सर्वाइवल भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यू कैन नॉट डू टू थिंग्स यस यू कैन नॉट बट आप ट्रांजिशन एक चीज करके दूसरी चीज में ट्रांजिशन जरूर कर सकते हैं. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हम ऐसे करते हैं जो 9 to 5 से ऐसे बट और MBBS को हर कोई नहीं मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पहले तो एग्जाम क्रैक करना मुश्किल एंड देन
0: सेटअप अ क्लिनिक और व्हाटएवर योर जॉब
1: और पढ़ाई करके पास करना भी बहुत मुश्किल है. तो मैं उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहता था. आई वांटेड टू यूज इट लेवरेज कैसे करूं उसको US मूव करने के लिए. तो एंड इवेंचुअली मेक मनी फ्रॉम इट और उसको सब कुछ म्यूजिक में डालूं.
0: अच्छा.
1: तो ये था बैक ऑफ द माइंड ये थॉट प्रोसेस था. तो और जब US में मूव किया तो एकदम ही आई स्टार्टेड ब्लोइंग म्यूजिक एकदम आउट करना स्टार्ट कर दिया. तो इंडिपेंडेंटली ही कर रहा हूँ अभी बट दो 2 to 3 US लेवल के साथ भी ट्रैक्स आ रहे हैं इस साल और एक दो इंडियन लेवल्स के साथ भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो इस साल के एंड तक आएंगे.
0: Till now, I've come to know that your music is your passion. But how you converted into your business, that you would like to know.
1: So, it's like...
0: मतलब it's quite tough. मतलब
1: मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें
0: मतलब भारत के कोने-कोने में मतलब कहीं भी दिल्ली जाओ दिल्ली से लेके गली तक म्यूजिक से भरा पड़ा है. तो आपने मतलब कोने-कोने में म्यूजिक है तो उसमें आपका म्यूजिक कैसा डिफरेंट होना चाहिए हाउ इट शुड बी वर्सेटाइल वो उसके बारे में थोड़ा बताइए.
1: राइट. सो यहाँ पे मेरा पार्ट आता है बिकॉज इसमें जो क्रिएटिविटी का रोल है उसमें ऑब्वियसली हमारी टीम भी है. तो एवरीवन गिव्स देयर इनपुट और बट मेकिंग सॉन्ग स्टार्टिंग से कैसे बनाना है बीट्स कैसे आ रही हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं बीच में गाने को कैसे कैचीनेस भी रखनी है बट मीनिंगफुल भी बनाना है एंड स्टोरी टेलिंग भी करनी है एंड यू नो इफ देयर इज अ मेलोडी एज वेल और इफ लोगों के कुछ इमोशंस जाग रहे हैं उससे सो डेफिनेटली दे आर गोना कम बैक एंड लिसन टू नॉट जस्ट दैट सॉन्ग बट और भी. तो क्रिएटिविटी में मेरा काफी रोल है बट आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी गुड एट ए बिजनेस दैट पार्ट. तो उसके लिए हमारी एक इंडिया में प्रमोशन के लिए है और US में भी है एंड वो एक तो प्री रिलीज का और पोस्ट रिलीज एंड उसके बाद जो हम शोज कर रहे हैं उसका भी सो दे आर बहुत अच्छे मैनेज कर रहे हैं एंड यस सो इट्स लाइक यूनिक साउंड बनाने के लिए ज्यादा हार्ड ट्राई भी नहीं करना, बट वी मेक श्योर दैट वी डोंट साउंड लाइक एनीवन, किसी को कॉपी भी नहीं कर रहे. तो बस वही थॉट प्रोसेस से हमारा म्यूजिक बन रहा है एंड वी हैव बीन गेटिंग गुड रिस्पॉन्स टिल नाउ. बट यू नो देयर इज इट्स बिगिनिंग, अभी तो जस्ट अ बिगिनिंग है.
0: ओके,
1: तो वी जस्ट वांट टू गो मोर ग्लोबल, UK, Canada, India, pan India में ही हर लैंग्वेज के लोग हैं, तो हम लाइक बिग आर्टिस्ट और भी बड़ा बनने का हमारा प्लान है. तो एंड वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग इट स्टेप बाय स्टेप. और
0: let's hope for the best.
1: Yes.
0: Acha, so I would like to how you look towards music, like aap abhi bol rahe ho ki global music and all, so like you have your own band or how is it like you perform in a band or you only do for your YouTube channel, you do only albums, shooting of albums, how is it like?
1: So it's a tino different
0: aspects.
1: Parts.
0: Okay.
1: Yeah. So we are working with different producers, US based producer hain, Canada mein hain, काफी अच्छे पंजाबी producers हैं, आपने सुना होगा, और पंजाब बेस्ड हैं, दिल्ली बेस्ड हैं और मुंबई बेस्ड हैं, जहाँ पे हम we are also pressure testing trance music, maybe कुछ अच्छा बना रहे हैं. तो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ

0: हैं, उसके बाद जो प्रमोशन टीम है जो रिलीज पे काम करती है, दे इवेंचुअली यूएस में जो हमारे जैसे अभी मायामी में शो हुआ था, तो डिफरेंट सिटीज में, बिग सिटीज में परफॉर्मेंस शो होते हैं लाइव, तो वो सेपरेट टीम जो वो देखते हैं. तो प्री प्रोडक्शन और रिलीज वाली जो प्रमोशन टीम है वही बाद में शोज का भी देखती है लाइव जो करते हैं.
1: Lastly, moving towards the end of this podcast, would any future projects you are planning or how is it like?
0: So, we are, अभी तक हमारा अच्छा चल रहा है, but हम नई चीजें experiment भी कर रहे हैं, तो that is a separate part, but we are making sure that हमारी releases consistently आए. एक मंथ में एटलीस्ट टू सॉन्ग्स का हमारा गोल है. तो एंड जैसे अभी अपने मैंने सुना है लाइक वेरी लाइट रोमांटिक
1: ज्यादा वो यंगस्टर्स में वो ज्यादा पॉपुलर है.
0: राइट. तो वैसे बैक टू बैक रिलीजेस आएंगे नेक्स्ट सिक्स मंथ्स.
1: वाओ.
0: और फिर ईयर एंड में एक दो पार्टी सॉन्ग का जो प्लान किए हैं.
1: How is your feedback on YouTube channel? How is up till now? How is the response for your albums?
0: It's been 1.5 years. So, जब हमने पहला song release किया था हंसके दिखा पंजाबी rap song उसमें singing किया तो लिखा था मैंने producer के साथ like we did it in 15 minutes but उसका पूरा overwhelming बहुत अच्छा response आया हमें.
1: Okay.
0: तो तब से लाइक हमारे फॉलोअर्स एंड यूट्यूब व्यूज स्टार्ट हुए तब से देयर नॉट बीन स्टॉपिंग. और
1: द ग्राफ इज ग्रोइंग
0: एंड कपल ऑफ मंथ्स में आई थिंक विल रीच 100K फॉलोअर्स. तो इट्स गुड. इंस्टाग्राम पे भी वी क्लोज टू आई थिंक 70-80K. With today's social media stuff, एक और स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं इज लाइक आवर ऑल मेन फोकस यूट्यूब पे. यूट्यूब शॉर्ट्स का तो है ही एंड वीडियोस टू इंस्टाग्राम शॉर्ट कट कंटेंट पे भी
1: ट्रेंडिंग के हिसाब से बनाते हैं.
0: 30 सेकंड्स में करना है एंड बेस्ट कंटेंट 30 सेकंड में कैसे दे सकते हैं. तो उस पर बैठते हैं फिर सॉन्ग के बेस्ट पार्ट्स, बेस्ट कैची, बेस्ट लिरिक्स उठाना, उस पर परफॉर्म करना और यू नो हाउ टू हुक अप द ऑडियंस इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, जो कि काफी क्रिएटर्स या सिर्फ म्यूजिक आर्टिस्ट नहीं बाकी भी सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड आल्सो देयर इज अ स्ट्रेटजी अलोंग बहुत प्लानिंग चल जाती है.
1: Yeah, till today I have been to two great festivals like Sunburn Festival, you must have heard of that.
0: Yeah.
1: Sunburn, I've been there, and next is Shakti band, which was very famous of Zakir Bhai, Zakir Hussain. Yeah. So I hope your brand also grows like that and you get millions and millions all viewership and your channel also grow and you yourself grow and of course you have good listenership and we have all loving artists like you for our channel also. So thank you for joining us on Acharya 90FM today and looking forward with a great association. Thanks again to Mangesh and thanks to you also for coming here. Thank you.
0: Thank you. Thanks.
1: So friends, today in our celebrity show we had Dr. Rish, the well-known singer from US, and I had a short interview with him on Acharya 90FM. So do listen it on Acharya 90FM YouTube channel. So myself, Tejaswini, taking your leave for today. Thank you.

आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। खाना खाते वक्त सलाद, पापड़, अचार, नमकीन सब हो, लेकिन आचार्य 90 FM ना हो तो खाना कुछ अधूरा सा लगता है। वैसे हर उलझन रास्ता नहीं रोकती, कुछ उलझने रास्ता दिखाने आती है और कुछ उलझने जिंदगी को आसान बनाने आती है। कुकिंग करते समय अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हार मत मानिए। कई बार नाकाम कोशिश भी किसी न्यू रेसिपी का इन्वेंशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड्डू बनाते समय उसका मिश्रण कुछ ज्यादा ही पतला हो गया हो और लड्डू गोल के बदले चपटे आकार ले रहे हो, तो मैं सीधे उसकी बर्फी ही बना देती हूँ। एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर लड्डू के पतले मिश्रण को फैलाओ, फिर 2 घंटे तक उसे फ्रिज में रखो, फिर उसे बाहर निकालो, फिर बारीक कटे ड्राई फ्रूट से उसे डेकोरेट करो, बाद में छुरी से उसे स्क्वायर शेप में काटो। दिखने में भी सुंदर और टेस्ट में भी अति सुंदर। जुगाड़ कीजिए और बिगड़े काम सुधारिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे शब्द वेदनाओं को कभी उजागर कर ही नहीं सकते। सिर्फ चुप रहना ही है जो बिना कुछ कहे दर्द जाहिर करने में माहिर है। एक बार दिवाली के त्योहार पर मैं लड्डू बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड्डू बन ही नहीं रहे थे। तब मैंने भी मौन व्रत धारण किया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी मौन रहकर सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से बहुत कुछ कह रही थी। वैसे समझने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उन फैले हुए लड्डुओं को सीधे डेकोरेट करना ही शुरू कर दिया। उन पर मुनक्का रखकर 2 आंखें बनाई, फिर काजू से एक स्माइल बनाई, केसर के डंठल से दोनों गालों पर मूछें बनाई और तैयार हो गए हंसते हुए शानदार लड्डू। वैसे इस जुगाड़ को देखकर सब खुश। कहते हैं कि जिंदगी के हसीन पल तब हमारे सामने आते हैं जब हम हमारी जिंदगी को शांत और आसान बनाते हैं। और चुप रहने पर बहुत कुछ सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। समझदार को इशारा ही काफी है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और इस शो का नाम है स्वाद का जायका। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेपर पे लिखे हुए लेसन्स बहुत आसानी से पढ़े जाते हैं, लेकिन जिंदगी के लेसन्स खुद जीने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस को शब्दों में बांधना पॉसिबल नहीं है। जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं होता। अपने फ्यूचर को आप अगर ब्राइट बनाना चाहते हो तो अपना दृष्टिकोण पहले बदलिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण बदलने के लिए अच्छे विचार जरूरी है। शालीनता किसी पर थोपी नहीं जा सकती, क्योंकि उसे हमारे मन से ही उजागर करना पड़ता है, और एक बार हमारे मन ने ठान लिया तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में भी जो खुद पर यकीन रखता है वही सक्सेसफुल होता है। छोटी सी बातों में जीवन को समझने की गहराइयां हैं। इसीलिए अपने दिल को भरिए उम्मीदों से, अपने दिमाग में रखिए सकारात्मकता और मन में सुनहरे कल के सपने। जैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस हैं हमारे अपने। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो।

कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद के जख्मों को खुद ही ठीक किया है, उस इंसान को दुनिया का कोई भी दुख हरा नहीं सकता। ऐसे लोग एकदम स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं। इसीलिए कर्म करते रहो, लोग हाथ से छीन सकते हैं, नसीब से नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक कहा है, आपके पास जीवन बदलने की शक्ति है तो इस काम की शुरुआत विचार बदलने से करें। भाई, हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा ही करना है, क्योंकि सब कुछ हमारे ही पास लौट कर आता है। वैसे भी जो तुम्हें यहाँ तक ले आया है वही आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगा। इसीलिए अगर अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो हर बात पर रिएक्शन देना पहले बंद कर दो। अगर हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी बात का कितना बुरा असर होगा, तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि अच्छा भी तो हो सकता है। तभी तो जवाब ना देना भी एक तरह का जवाब ही है। जनाब, किचन के काम में फेल होना मतलब किचन में नो एंट्री, ऐसे मत सोचिए। फेल होना मतलब एक और चांस होता है, फिर से पुराने एक्सपीरियंस और नए जोश के साथ कोशिश करने का चांस। हार कर गिरना बुरा नहीं होता, लेकिन गिर कर दोबारा ना उठना और नई कोशिश छोड़ देना, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। हर मिस्टेक हमें कुछ सिखाती है, सिर्फ उस मिस्टेक से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं कि जिसने कभी गलती की ही नहीं उसने कभी कोशिश ही नहीं की, और ना ही कुछ नया सीखने का सोचा। इसलिए चाहे किचन हो या जिंदगी, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड।

मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। हार होने से स्टोरी खत्म नहीं होती, ये तो नए अध्याय की शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वैसे ऊपर वाले ने पहले से ही सबकी स्टोरी लिखी है, इसीलिए तो भगवान पर भरोसा रखिए। तो क्या हुआ कि कुछ रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, कुछ रास्ते बहुत स्लो हैं। अगर भगवान हमारी कोशिश का जवाब देने में टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि जिसने आपके जीवन की स्टोरी लिखी है ना, उसे उसका अंतिम रिजल्ट भी पता ही है। इसलिए भरोसा रखिए अपनी कोशिश पर और ऊपर वाले के प्लान पर। वैसे इम्पॉसिबल इस वर्ड को हम आई एम पॉसिबल ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपना नजरिया बदलने की। अच्छी सोच एक रोशनी की तरह होती है, जो अंधेरे में भी हमें उम्मीद की राह दिखाती है। इसलिए इम्पॉसिबल शब्द को अपने मन की डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। अगर आपने ऐसे किया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। और इस विचारधारा को अपनाकर हमें विकसित भारत का सुनहरा सपना सारे फूल बाग में लगाए नहीं जाते, सब लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कुछ दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते। स्वाद का जायका इस शो पर आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से हमारे प्यारे ऑडियंस को मेरा कमिंग सून वाला बाय बाय। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ शब्बीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो कहानियों का गुल्लक में। कहानियां जो हमारे दिल को छू लेती है, कहानियां जो कभी कभी खुशी के पल देती है तो कभी कभी गम के पल भी, कहानियां जो हमें जीने का मकसद सिखाती है, और कहानियां हमें उन दिनों की याद दिलाती है जो हमने बचपन में जी होती है, या फिर हमारे खुशियों के पल में, या फिर बहुत सारे पल में। तो आइए दोस्तों, आज मैं सुनाता हूं आपको एक ऐसी कहानी, होटल शालीमार। होटल शालीमार कहानी है एक ऐसे कपल की जो गांव से आते हैं और बहुत ज्यादा गरीब है। विकास इस कहानी का सबसे प्रमुख किरदार और साथ ही साथ उसकी पत्नी, वो भी है इस कहानी का प्रमुख किरदार, सुमन। विकास बचपन से ही अनाथ, बूट पॉलिश करने वाला एक साधारण सा लड़का, बहुत सिंपल। दिन की आमदनी लगभग 100 रुपए, और बड़ी मशक्कत के साथ उसकी शादी हो जाती है सुमन के साथ। सुमन जिसने अपनी पढ़ाई 3री-4थी कक्षा तक ही की होती है, और उसके बाद बड़ी गरीबी होने के कारण अपने फैमिली के साथ वो छोटे मोटे काम में लग जाती है, कभी खेती में, कभी किसी और कबाड़ी में, या कभी किसी और मजदूरी में। दिन गुजरे, साल गुजरे, और फिर देखते देखते जब सुमन बड़ी हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी विकास से कर दी। अब शादी होने के बाद विकास की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेबी को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दे, पर उसकी आमदनी इतनी ना होने के कारण उसने सुमन से पूछा कि सुमन, मुझे आपको देने के लिए फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी कर सकूं। सुमन मुस्कुराई और उसने विकास से कहा कि मुझे कोई भी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ काफी है मेरे लिए। विकास मुस्कुराया और कहा कि मैं जानता हूं मेरा साथ काफी है तुम्हारे लिए, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं, या कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर चाहिए जो तुम मुझसे मांग नहीं रही। सुमन एक पल के लिए सोचने लगी, और सोचते सोचते सुमन ने विकास से कहा कि मेरी बचपन से ना एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो जो नुक्कड़ पे आप होटल देख रहे हो, वहां पे जाके खाना खाना है। मैंने कई बार वहां से गुजरते समय देखा है कि जो हमारे गांव के बड़े लोग हैं वो जाते हैं वहां पे अपनी परिवार के साथ और खाना खाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, वहां पे तरह तरह के पकवान मिलते हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। मैंने कभी उस होटल को अंदर से देखा नहीं है, और मैं नहीं जानती कि वहां के पकवान कैसे लगते होंगे, क्या वो जैसे हम पकवान बनाते हैं वैसे ही लगते हैं, या फिर वो कुछ अलग से लगते होंगे। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं उस होटल में जाके एक बार का खाना खाऊं। तो विकास कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा। सुमन की ये बातें उस दिन पूरी रात विकास के दिमाग में चलती रही। विकास इधर से उधर करवटें बदलते रहा, छत को देखता रहा, और सोचता रहा कि वो कुछ भी करके, कैसे भी करके सुमन की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। पर विकास के पास ज्यादा पैसे ही नहीं थे। वो दिन के 100 रुपए कमाने वाला लड़का कैसे एक

एक नौकरी ऐसी जो माल से भरी हुई गाड़ियां आती है गांव में, तो उसे खाली करने के लिए मजदूर की जरूरतें होती है। तो वहां पर वो जाता है और उसने वहां पर वो नौकरी पाई, और नौकरी पाने के बाद वो हर रोज सुबह वहां पर जाकर माल ढोने लगा, वो जो माल से भरी हुई गाड़ियां थी उन्हें खाली करने लगा, और दिन के उसे 40 रुपए मिलने लगे। उसके साथ ही साथ उसने उसके एक दोस्त संदेश उसे कहा कि अगर तू बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए और कुछ घंटे के लिए मुझे अपनी रिक्शा चलाने दे, तो मेरी एक जरूरत आन पड़ी है, मैं उसके लिए थोड़े पैसे जमा करना चाहता हूँ, तो संदेश तू मुझे मदद करेगा क्या? संदेश और विकास बचपन के दोस्त थे, तो संदेश ने कहा कि जरूर, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, पर तू पहले मुझे ये बता कि तू रिक्शा क्यों चलाना चाहता है, जब तू एक नौकरी तो कर रही है, बूट पॉलिश करता ही है तू, उसमें तेरा पूरा टाइम जाता है, और साथ ही साथ अभी तूने एक और नौकरी कर रहा है गाड़ी खाली करने की, तो फिर अभी ये तीसरा काम क्यों करना चाहता है? तो फिर विकास संदेश से पूरा मांझरा बयां करता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, और ऐसी अपनी बीवी की ख्वाहिश है जो उसे पूरी करनी है। तो इस बात में संदेश बड़े मजाकिया तौर पर उसे कहता है, वारे जोरे के गुलाम, और उसकी चुटकी लेता है।

पर अंदर ही अंदर संदेश को बड़ी खुशी महसूस होती है कि विकास बहुत दिनों बाद खुश दिखाई दे रहा है और वो चाहता है कि ठीक है ये खुशी उसके जिंदगी में बरकरार रहे। तो संदेश उसे कह देता है कि विकास तू जरूर मेरे रिक्शा लेके जा सकता है। अब पहला दिन आता है नौकरी का जब विकास जाकर गाड़ी खाली करता है, वहां से 40 रुपए कमाता है, और शाम को जब वो संदेश की रिक्शा लेकर जाता है तो एक दो किराए मिलते हैं, उसमें 60 रुपए की मजदूरी होती है, तो लगभग बूट पॉलिश के 100 रुपए और ये लगभग 100 रुपए मिला के एक दिन में उसके पास 200 रुपए जमा हो जाते हैं। वो 200 रुपए जब वो लेकर आता है तब वो सोचता है कि अभी 200 रुपए रखे कहां, तो वो घर पूरा ऊपर से नीचे तक छान मारता है, इधर से उधर देखता है और सोचता है कि पैसे कहां रखूं कहां रखूं, किसी डिब्बे में रख दूं, पर डिब्बे में रख दूं तो शायद ये पैसों का पता सुमन को चल जाएगा और फिर सुमन पूछेगी कि क्यों पैसे जमा कर रहे हो। तो विकास सोचता है कि मैं ही कुछ एक तरकीब लाता हूं। तो विकास क्या करता है, कबाड़ ओपन करता है, जो उसके घर में एक छोटी सी अलमारी रखी होती है जो काफी पुरानी होती है, टूटी फूटी होती है, और जब वो अलमारी खोलता है तो देखता है उस अलमारी में चूहे इधर से उधर कूद रहे हैं। तो वो ये जरूर जान लेता है कि अगर इस अलमारी में मैं ऐसे ही पैसे रख दूं तो ये चूहे मेरे पैसों को कतर देंगे और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो विकास बाहर जाता है और एक छोटा सा गुल्लक खरीद के आता है और उस गुल्लक में वो पैसे रखता है और एक ताला लाता है, उस अलमारी को वो लॉक कर देता है ताले से, ताकि सुमन ना जान पाए कि विकास सुमन की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे जमा कर रहा है।

पहले दिन तो 200 रुपए कमा लेता है, फिर दूसरे दिन जब जाता है विकास अपने काम के लिए, वही माल से भरी हुई गाड़ी खाली करने, तो देखता है कि वो गाड़ी पहले से ही खाली हो चुकी है और आज के दिन का काम खत्म हो गया। अब विकास थोड़ा मायूस हो जाता है। उसके पास एक ही जरिया होता है कि आज के पैसे वो जब शाम में रिक्शा चलाएगा तो उससे कमा लेगा, पर जब वो रिक्शा लेकर निकलता है शाम में तो उसमें भी उसके पास पैसे नहीं आते और उस पूरे दिन की कमाई लगभग जो बूट पॉलिश से आती है उसके जो रोज का काम है 80 रुपए, तो 2 दिन में ऐसे विकास 280 रुपए जमा करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता गुजरता है। एक हफ्ते में बूट पॉलिश के काम से लेकर छोटे से लारी को खाली करने से लेकर माल की गाड़ी को खाली करने से लेकर और रिक्शा चलाने से लेकर पूरे हफ्ते में वो लगभग 700 रुपए जमा कर पाता। और वो ये जरूर जानता है कि अगर उसे होटल शालीमार में अपनी बीवी को लेके जाना है तो लगभग 2 से 2500 रुपए की उसे जरूरत है। एक हफ्ते में अगर वो 700 रुपए जो जमा कर पाया है, अगर यही काम वो निरंतर करे तो शायद एक महीने में वो 2 से 2500 रुपए जमा कर पाए। ऐसे ही करते करते करते करते करते करते पूरे 18 दिन हो जाते हैं। और 18 दिन में जब विकास घर आता है और पैसे गिनने लगता है तब लगभग 2283 रुपए वो जमा कर लेता है। और इतने पैसे काफी होते हैं कि वो अपनी बीवी को लेके जाए, और इतने पैसे काफी होते हैं कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा कर सके। और जब वो पैसे देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, जैसे बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है और उसे वो खिलौना मिल जाता है तो वो बच्चा किस तरीके से खुश होता है। या फिर आप बरसों से किसी

हो जाता है जिस तरीके से उसने पहली बार सुमन को देखा था, और सुमन इस चीज के लिए बेहद खुश होती है कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पति ने न जाने कितनी मेहनत की।

जितने भी रास्ते पर लगे हुए पेड़ हैं, मानो सुमन के खुशी का इजहार कर रहे हैं। आसमान में जितने भी पंछी हैं, सब खुशी के गीत गा रहे हैं और सुमन उसमें ही खोई हुई, इतनी मदहोश कि उसे ये पता भी नहीं चलता है कि कब होटल शालीमार आ जाता। ओ सुमन जी, अब रिक्शे से नीचे उतरिएगा या फिर रिक्शे में बैठकर ही खाना खाना है आपको? विकास सुमन से कहता है। ओ अच्छा, हम आ गए। हाँ हाँ आ गए, चलिए। अब जब दोनों रिक्शे से नीचे तो उतर जाते हैं, पर दोनों के दिल में एक बहुत बड़ी कश्मकश पैदा हो जाती है, और वो ये कश्मकश कि इतने बड़े होटल में जाने के लिए इनके पास पैसे तो है, पर ये कभी इतने बड़े होटल में गए नहीं, और अगर ये उस होटल में गए तो जो होटल का दरबान है, क्या वो इनको अंदर आने देगा? क्या वो इनको होटल के बाहर से ही भगा देगा? क्या फिर सुमन की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी? तो जानते हैं इस कहानी का अगला भाग एक ब्रेक के बाद।